भारत में आज 29 प्रदेश हैं, जिनकी अपनी अपनी भाषा और संस्कृति है। पर अब हम जहाँ की बात करने जा रहे हैं, वो जगह हर बोली हर त्योहार को दिल से अपना बनाने वाली यानी देश की राजधानी दिल्ली है।

दिल्ली एक महानगरीय क्षेत्र है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है, जो कि ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली के बाद बसी थी। ऐतिहासिक महत्व वाला यह महानगरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण व्यापारिक, परिवहन एवं सांस्कृतिक हलचलों से भरा है। दिल्ली देश के उत्तरी मध्य भाग में गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना के दोनों तरफ बसी है। दिल्ली भारत का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ के ऐतिहासिक तथा रमणीक स्थल अपने आप में विशेष हैं। पर्यटन एवं विकास के उद्देश्य से यह आगरा और जयपुर से जुड़ा है। दिल वालों का शहर कहे जाने वाली दिल्ली के इतिहास में संपूर्ण भारत की झलक सदैव मौजूद रही है।

अमीर खुसरो और गालिब की रचनाओं को गुनगुनाती हुई दिल्ली नादिर शाह की लूट की चीखों से सहम भी जाती थी। चांदनी चौक, जामा मस्जिद की संकरी गलियों से गुजरकर चौड़े राजपथ पर 26 जनवरी की परेड को निहारती हुई दिल्ली जनवरी को उन तीन गोलियों की

दिल्ली ने दौलताबाद जाने के तुगलकी फरमानों को भी सुना और लाल किले से प्रधानमंत्री के अभिभाषणों पर तालियां भी बजाई। कभी रघुराय ने दिल्ली की रायसीना पहाड़ी को अपने कैमरे में कैद कर लिया, तो कभी हुसैन के रंगों ने दिल्ली को रंग दिया। दिल्ली कभी कुतुब मीनार की मंजिलों को चढ़ाने में पसीना बहाती रही, तो कभी हुमायूं के मकबरे में पत्थरों को तराशती रही। 9 बार लूटे जाने से भी दिल्ली के श्रृंगार में कोई कमी नहीं आई। आज भी दिल्ली विश्व के सुंदरतम नगरों में गिनी जाती है। अनुश्रुति है कि इसका नाम राजा ढीलू के नाम पर पड़ा, जिसका अधिपत्य ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस क्षेत्र पर था। बिजोला अभिलेखों में उल्लेखित ढिल्ली या ढिल्ल का सबसे पहला लिखित उदाहरण है। महाभारत काल में पांडवों द्वारा बसाया गया इंद्रप्रस्थ नगर आज हमारे देश का हृदय माना जाता है। एक मत के अनुसार दिल्ली का नामकरण फारसी शब्द दहलीज पर पड़ा है, जिसका अर्थ है प्रवेश द्वार। कुछ अन्य लोगों के मतानुसार 8वीं सदी में कन्नौज के राजा दिल्लू के

नाम पर इसका नामांकन हुआ है। कई अवसरों पर दिल्ली ने कई साम्राज्यों के पतन में अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे बहुरूपदर्शी भूतकाल में न केवल दिल्ली बल्कि विश्व के महानतम लोकतंत्र की खोज की जा सकती है। महाभारत काल से ही दिल्ली का विशेष उल्लेख रहा है। दिल्ली का शासन एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित होता गया। यहाँ यह मौर्यों से आरंभ होकर पल्लवों तथा मध्य भारत के गुप्तों से होता हुआ 13वीं से 15वीं सदी तक तुर्क और अफगान और अंत में 16वीं सदी में मुगलों के हाथ में पहुंचा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं कुछ और इतिहास की तरफ। 1911 में ब्रिटिशर्स द्वारा कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर दिल्ली सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। दिल्ली के इतिहास में 69वां संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में लागू हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। दिल्ली का पुरातात्विक परिदृश्य अत्यंत दिलचस्प है। सहस्राब्दियों पुराने स्मारक कदम कदम पर खड़े नजर आते हैं। नए या पुराने किलेबंद स्थान पर निर्मित 13 शहरों ने दिल्ली अरावली त्रिकोण के लगभग 180 वर्ग किलोमीटर के एक सीमित क्षेत्र में अपनी मौजूदगी के निशान छोड़े हैं। दिल्ली के बारे में यह किंवदंती प्रचलित है कि जिसने भी यहाँ नया शहर बनाया उसे इसे खोना पड़ा। सबसे पुराना नगर इंद्रप्रस्थ करीब 1400 ईस्वी पूर्व निर्मित किया गया माना जाता है और वेद व्यास रचित महाकाव्य महाभारत में भी इसका वर्णन पांडवों की राजधानी के रूप में मिलता है। इस त्रिकोण में निर्मित दिल्ली का दूसरा शहर है अनंगपुर या आनंदपुर, जिसकी स्थापना लगभग 1020 ईस्वी में तोमर राजपूत नरेश अनंगपाल ने राज निवास के रूप में की थी। यह शहर अर्धवृत्ताकार निर्मित तालाब सूरज कुंड के आसपास बना था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली एक वन जल संभर पर स्थित है, जो गंगा तथा सिंधु नदी प्रणालियों को विभाजित करता है। दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति विशेषता पर्वत स्कंद रिज है, जो राजस्थान प्रांत की प्राचीन अरावली पर्वत श्रेणियों का चरम बिंदु है। अरावली संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, लेकिन अब यह पूरी तरह वृक्ष विहीन हो चुकी है। उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में फैला और तिकोने परकोट की दो भुजाओं जैसा लगने वाला यह स्कंद क्षेत्र 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कछारी मिट्टी के मैदान को आकृति की विविधता देता है तथा दिल्ली को कुछ उत्कृष्ट जीव व वनस्पतियां उपलब्ध कराता है। यमुना नदी त्रिभुजाकार परकोटे का तीसरा किनारा बनाती है। इसी त्रिकोण के भीतर दिल्ली के प्रसिद्ध 7 शहरों की उत्पत्ति ईसा पूर्व 1000 से 17वीं शताब्दी के बीच हुई थी। किसी भी ऐतिहासिक राजधानी की तरह दिल्ली भी वैविध्यपूर्ण केंद्र है, जिसमें प्रशासन, सेवाएं और निर्माण अच्छी तरह मिले जुले हैं।

दिल्ली कला एवं हस्त कौशल की प्रचुर विविधता का केंद्र रहा है। मुगल काल में दिल्ली रत्न और आभूषण, धातु पच्चीकारी, कसीदाकारी, सोने की पच्चीकारी, रेशम और जरी का काम, मीनाकारी और शिल्प मूर्ति कला और चित्रकला के लिए विख्यात थी। दिल्ली का वर्तमान प्रशासकीय महत्व उस समय से है जब भारत का शासन न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी वाणिज्यिक और सेवा केंद्र के रूप में विकसित हो गई। दिल्ली में गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना और मक्का आदि की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन अब किसान अनाज वाली फसलों के बजाय फलों और सब्जियों, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये गतिविधियां खाद्यान्नों फसलों के मुकाबले अधिक लाभदायक साबित हुई हैं।

यदि शिक्षा की बात करें तो दिल्ली भारत को एक उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। यहाँ के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी भारत के सभी भागों से आते हैं। दिल्ली में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान के अनेक केंद्र हैं, लगभग 11 विश्वविद्यालय, अनेक महाविद्यालय, अनगिनत प्राथमिक शिक्षा केंद्र पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। यहाँ कई सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान हैं, जो कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, विधि और प्रबंधन में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत कई कॉलेज एवं शोध संस्थान हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, टेरी ऊर्जा और संसाधन संस्थान एवं जामिया मिलिया इस्लामिया उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं।

0: बोलो, बाँस से क्या होता है?
1: बंदर,
2: बादुड़।

0: अच्छा मुन्ना, बोलो तेज से क्या होता है?
1: टीचर
2: जल्दी

कला के क्षेत्र में भी दिल्ली आगे रहा है। शुरुआत से देखें तो 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक दिल्ली की कला और वहां के रहन सहन पर मुगल सल्तनत का प्रभाव रहा। मुगलों के समय में तुर्की, फारसी और भारतीय कलाओं के मिश्रण ने एक नई कला को जन्म दिया। जामा मस्जिद और लाल किला इसी वक्त में बनाए गए थे। दिल्ली दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है, लेकिन 1911 में नई दिल्ली की स्थापना हुई और ब्रिटिश वास्तुकला ने दिल्ली के किलों और महलों के बीच अपनी जगह बना ली। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन सहित नई दिल्ली को एक आधुनिक रूप दिया। दिल्ली के वैविध्यपूर्ण इतिहास ने विरासत में इसे समृद्ध वास्तुकला दी है। शहर के सबसे प्राचीन भवन सल्तनत काल के हैं और अपनी संरचना व अलंकरण में भिन्नता लिए हुए हैं।

प्राकृतिक रूपांकनों, सर्पाकार बेलों और कुरान केन के अक्षरों के घुमाव में हिंद राजपूत काल के कारीगरों का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। मध्य एशिया से आए कुछ कारीगर कवि और वास्तुकला की सेल्जुक शैली की विशेषताएं, मेहराब की निचली कोर पर कमल कलियों की पंक्ति, उत्कीर्ण अलंकरण और बारी बारी से आड़ी और खड़ी ईंटों की चिनाई है। जब खिलजी का शासनकाल आया तब तक इस्लामी वास्तुकला में प्रयोग तथा सुधार का दौर समाप्त हो चुका था और इस्लामी वास्तुकला में एक विशेष पद्धति और उपशैली स्थापित हो चुकी थी जिसे पख्तून शैली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली एक आकर्षण का पर्यटन स्थल भी है। दिल्ली में मंदिरों से लेकर मॉल तक, किलों से लेकर उद्यान तक और अनेक ऐतिहासिक इमारतें और किले हैं जो इतिहास की जीवंत निशानियां हैं। प्रतिवर्ष लाखों सैलानी दिल्ली आते हैं और यहाँ की मिश्रित संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली राज्य पर्यटन और परिवहन विकास निगम पर्यटकों को यहाँ के विभिन्न स्थानों की सैर कराने के लिए विशेष बस सेवाएं चलाता है। निगम ने पैरासेलिंग, पर्वतारोहण और नौकायन जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित की हैं। निगम ने दिल्ली हाट का विकास किया है जहां काफी और विभिन्न राज्यों की खाद्य वस्तुएं एक जगह उपलब्ध हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में ऐसी ही हाट बनाने की योजना है।

दिल्ली में कई बाग बगीचे हैं, जिनमें जापानी शैली में बना बुद्ध जयंती पार्क, कनॉट पैलेस के बीच में स्थित सेंट्रल पार्क, जो दुकानों में आने जाने के लिए छोटे मार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट पार्क, लोधी गार्डन, महावीर जयंती पार्क, मुगल गार्डन, राष्ट्रीय गुलाब पार्क, एशिया का सबसे बड़ा नेशनल जूलॉजिकल पार्क क्यूडिशा बाग, रोशन आरा गार्डन आदि हैं। इसके अलावा दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन एवं लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट को भी बगीचों का रूप दिया गया है। हर धर्म को दर्शाते कई स्थल यहाँ मौजूद हैं, जैसे कालकाजी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, झंडे वाला देवी मंदिर, आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च, बंगला साहिब गुरुद्वारा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार, जामा मस्जिद आदि। इसके अलावा दिल्ली घूमने आने वालों के लिए यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख, गांधी स्मृति, हौज खास, पुराना सचिवालय, संसद भवन, बेगम सामरू का महल, कोतवाली, इंडिया गेट, तुगलकाबाद, प्रगति मैदान, दिल्ली हाट आदि। प्रगति मैदान 149 एकड़ क्षेत्र में फैला यह मैदान नए एशिया के सर्वोत्तम प्रदर्शनी स्थलों में से एक है। मथुरा रोड पर पुराने किले से आगे स्थित देश के इस सर्वोत्तम मैदान में 54,685 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले 15 विशाल प्रदर्शनी स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ 10,000 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्र है, जहाँ समय समय पर व्यापारिक प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। दिल्ली हाट, लिटिल इंडिया के दर्शन कराने वाला यह साप्ताहिक बाजार हस्तशिल्प है, व्यंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हस्तशिल्पी एवं भाग लेने वाले बदलते रहते हैं। प्रत्येक हस्तशिल्पी को 2 सप्ताह तक के लिए दी जाने वाली यहाँ कुल 62 स्टॉल हैं, जो क्रमिक रूप से बदलती रहती हैं, ताकि देश विदेश के अधिकतम हस्तशिल्पियों को यहाँ भागीदारी और अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। देश के लगभग सभी प्रांतों के हस्तशिल्पियों को यहाँ पर एक साथ देखा जा सकता है। दिल्ली के स्वाद में पूरा भारत कहीं न कहीं दिखाई देता है। दिल्ली में खाने पीने की बहुत सी दुकानें और भोजनालय हैं। अगर आप दिल्ली जाने वाले हैं तो देश के विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आप दिल्ली हाट का रुख कर सकते हैं। यहाँ देश के लगभग हर राज्य का भोजन मिलता है। कुल मिलाकर दिल्ली में हर तरह के भोजन का जायका लिया जा सकता है। दिल्ली में चांदनी चौक एक जगह है जो फ्रूट चाट, गोलगप्पों, पकौड़ों और बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है। दिल्ली की संस्कृति, यहाँ के लंबे इतिहास और भारत की राजधानी के रूप में ऐतिहासिक स्थिति से पूर्ण प्रभावित रही है। यह शहर में बने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों से ज्ञात है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने दिल्ली शहर में लगभग 1200 धरोहर स्थल घोषित किए हैं, जो कि विश्व में किसी भी शहर से कहीं अधिक हैं। महानगर होने की वजह से दिल्ली में भारत के सभी प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम कुछ वार्षिक उत्सवों का आयोजन भी करते हैं। ये रोशन आरा उत्सव, शालीमार उत्सव, कुतुब उत्सव, शीतकालीन मेला, उद्यान और पर्यटन मेला, जहाँ खुसरो उत्सव तथा आम महोत्सव हैं। दिल्ली में बच्चों के मनोरंजन एवं शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क, विज्ञान केंद्र, प्लेनेटेरियम, संग्रहालय और चिड़ियाघर हैं। यहाँ बाल भवन कोटला रोड पर स्थित बाल भवन में बच्चों के लिए नियमित रूप से नाटक, संगीत, चित्रकारी आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल संग्रहालय एवं विज्ञान सेंटर आदि भी यहीं पर स्थित हैं। बच्चों के लिए पुस्तकालय, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, बीसी राय मेमोरियल वाचनालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालय इत्यादि यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली राजधानी होने के कारण कई महत्वपूर्ण खेल कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता आ रहा है।

यहाँ अनेक स्टेडियम भी मौजूद हैं, जैसे कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, सिरीफोर्ट कॉम्प्लेक्स, तालकटोरा स्टेडियम आदि। सन 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन भी दिल्ली में किया गया था, जिसे पूरे विश्व में जाना गया। विभिन्न खेलों के लिए आयोजित किए जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन रहा। भारत पूरे 3 दशकों बाद ऐसे किसी आयोजन का मेजबान बना। इससे पहले भारत ने 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी।

दिल्ली का सफर यहीं पूरा हुआ। हमारे साथ यूं ही बने रहिए और चलते रहिए इसी तरह पूरे भारत को जानने, 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में। जय हिंद।

टूटे टिकड़ जैसे किले पर, कच्ची मूली के स्वाद की सी धूप, तुगलकाबाद के खंडहरों में घास और पत्थरों का संबनन, परछाइयों में कमान, कमान में परछाइयां, खिड़की मस्जिद आंखों को बेद कर सुई की मानन आर पार निकलती जामा मस्जिद की सीढ़ियों की कतार,

पेड़ की जड़ों से अन्न नली तक उठ खड़ा होता कुतुब। चारों ओर महक अनाज की, मांस की, खून की, जेल की, महल की, बीते हुए कल की, सदियों की, सदियों की सांस इस क्षण की आंख, आज की उड़ती है इतिहास में, उतरती है दरार में गालिब की मजार की, भटकती है खान खानान की अधखाई हड्डी की खोज में, और जहां आरा की बदनसीबी को निकल पड़ती है मकबरा दर मकबरा। अभी भी धूल, अभी भी कोहरा, अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया कोई फर्क मांस और पत्थर में। लाल किले की पश्चिम कमान में सोई फाख्ता की योनी की छत से होती हुई घुपती है मेरी आंख में किरण एक सूर्य की।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लूटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

स्वर्णिम भारत के पूर्वी तट की ओर जब हम चलते हैं, एक विशेष प्रदेश जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और जिसके मिट्टी को सागर की लहरें छूते हुए कई सारी महान व्यक्ति विशेष और कलाकारों से राज्य श्रृंगारित हुआ है। आइए इस शुभ दिन पर इस राज्य की महानता की गाथा का वर्णन करते हुए इसके ऐतिहासिक तथ्य, भौगोलिक तथ्य और संस्कृति के बारे में आप सभी को अवगत कराते हैं। आइए बढ़ते हैं उड़ीसा की ओर।

झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के इस प्रदेश का इतिहास बहुत ही मनोरंजक है। उड़ीसा राज्य प्राचीन समय में कलिंग के नाम से विख्यात था। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग विजय करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी थी, जिसका कलिंग के निवासियों ने जमकर सामना किया। सम्राट अशोक ने कलिंग तो जीता, परंतु युद्ध के भीषण संहार से सम्राट के मन में वैराग्य पैदा हो गई और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग फिर से स्वाधीन हो गया। इसके बाद ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खारावेल राजा के अधीन कलिंग एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, पर खारवेल की मृत्यु के बाद उड़ीसा की ख्याति लुप्त हो गई। चौथे शताब्दी में विजय पर निकले समुद्रगुप्त ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और इस प्रदेश के 5 राजाओं को पराजित किया। बाद में सन 610 में उड़ीसा पर शशांक नरेश का अधिकार हो गया और शशांक के निधन के बाद हर्षवर्धन ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। सातवीं शताब्दी में उड़ीसा पर गंगवंश का शासन रहा। सन 795 में महाशिवगुप्त यजाति द्वितीय ने उड़ीसा का शासन भार संभाला और उड़ीसा के इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने कलिंग, कनगोड़ा, उत्कल और कौशल को मिलाकर खारावेल की भांति विशाल साम्राज्य की नींव रखी। 16वीं शताब्दी के लगभग मध्य से 1592 तक उड़ीसा 5 मुस्लिम राजाओं द्वारा शासित रहा। मुगलों के पतन के पश्चात उड़ीसा पर मराठों का अधिकार रहा। सन 1803 में ब्रिटिश राज से पहले उड़ीसा मराठा शासकों के अधीन रहा। अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, जिसे अब उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उड़ीसा स्टेट फॉर्मेशन।

स्वतंत्रता के बाद ओडिशा तथा इसके आसपास की रियासतों ने भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी। रियासतों के विलय संबंधी आदेश 1949 के अंतर्गत जनवरी 1949 में ओडिशा की सभी रियासतों का ओडिशा राज्य में संपूर्ण विलय हो गया। ओडिशा के कलिंग, उत्कल और उत्तरचे से कई प्राचीन नाम हैं। कला द्वारा हम किसी भी प्रदेश की पहचान करते हैं। जानते हैं कुछ यहाँ के कला के बारे में। ओडिशा ने भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का सृजन किया है। भित्ति चित्रों, पत्थर व लकड़ी पर नकाशी देव चित्र पट्ट चित्र कला के नाम से विख्यात है और ताड़ पत्रों पर चित्रकारी के माध्यम से कलात्मक परंपराएं आज भी कायम है। यहाँ हस्तशिल्प कलाकार चांदी में बेहद महीन जाले की कटाई के अलंकृत शिल्प कला के लिए विख्यात है। जनजातीय इलाकों में कई प्रकार के लोक नृत्य है। मादल व बांसुरी के संगीत गाँव में आम है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी 700 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है।

मूलतः ये ईश्वर के लिए किया जाने वाला मंदिर नृत्य था। नृत्य के प्रकार, गति, मुद्राएं और भाव भंगिमाएं बड़े मंदिरों की दीवारों पर, विशेषकर कोणार्क में, शिल्प व उभरी हुई नक्काशी के रूप में अंकित है। मयूरभंज और सरायकेला प्रदेशों का छऊ नृत्य, जो कि मुखौटे पहने कलाकारों द्वारा किया जाता है, ओडिशा की संस्कृति की एक अन्य धरोहर है।

आइए अभी जानते हैं कुछ साहित्य के बारे में। सारला दास ही उड़िया के प्रथम जातीय कवि और उड़िया साहित्य के आदिकाल के प्रतिनिधि हैं। कटक जिले की झंकड़वासिनी देवी चंडी सारला के वर प्रसाद से कवित्व प्राप्त करने के कारण सिद्धेश्वर परिड़ा ने अपने को शूद्र मुनि सारला दास के नाम से प्रचारित किया। इनके तीन कृतियां उपलब्ध है, जैसे कि विलंका रामायण, महाभारत, चंडी पुराण। ये हम आदि युग की बात कर रहे थे, अभी मध्य युग की ओर चलते हैं। इस युग में पंच सखाओं के साहित्य का प्रधानता है। ये पंच सखा है बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशवंत दास तथा अनंत दास और अच्युतानंद दास। चैतन्य दास के साथ सख्य स्थापित करने के कारण ये पंच सखा कहलाए। इनके उपास्य देवता थे पुरी के जगन्नाथ जी, जिनकी उपासना शून्य और कृष्ण के रूप में ज्ञान मिश्रा योग योग प्रधान भक्ति तथा काय साधना द्वारा की गई। पंच सखाओं में से प्रत्येक ने अनेक ग्रंथ लिखे। 16वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में दिवाकर दास ने जगन्नाथ चरित्रमृत के नाम से पंच सखाओं के जगन्नाथ दास की जीवनी लिखी तथा ईश्वरदास ने चैतन्य भागवत लिखा। सालबेग नामक एक मुसलमान भक्त कवि के भी भक्ति रसात्मक अनेक पद प्राप्त है। इस युग में शिशु शंकर दास, कपिलेश्वर दास, हरिहर दास, देव दुर्लभ दास तथा प्रताप राय जैसी भी महान कवियों ने अपने अपने रचना दिए हैं। आइए सुनते हैं भक्त सालबेग जी के द्वारा रचित एक भजन।

अभी बात करते हैं रीति युग के बारे में। रीति युग में 1651 से लेकर के 1703 तक कवि दीन कृष्ण दास ने बहुत सारे काव्यों का रचना किया। साथ ही साथ कवि उपेंद्र भंज, जिनको रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं, इनके कारण ही रीति युग को भंज युग भी कहा जाता है। इनकी अनेक प्रतिभाशाली कृतियों ने उड़िया साहित्य में इनको सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित किया। भंजकालीन साहित्य के बाद उड़िया साहित्य में चैतन्य प्रभावित गौड़ीय वैष्णव धर्म और रीतिकालीन लक्षण दोनों का समन्वय देखने में आता है। इनमें प्रधान है सचिदानंद कवि सूर्य, साधु चरण दास, भक्त चरण दास, अभिमन्यु सामंत सिहार, गोपाल कृष्ण पटनायक, यदुमणि महापात्र तथा बलदेव कवि सूर्य आदि। इस क्रम में प्रधानत और दो व्यक्ति पाए जाते हैं, जिनका नाम है ब्रजनाथ बड़जेना और भीम भोई। ब्रजनाथ बड़जेना ने गुंडीचा विजय नामक एक हिंदी काव्य भी लिखा था और भीम भोई जन्मांध थे। वो जाति में आदिवासी थे, वो निरक्षर थे, लेकिन उनके रचित स्तुति चिंतामणि, ब्रह्ममणि रूपण गीता और अनेक भजन भी पाए जाते हैं। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज के अंदर कुसंस्कार कुरीति के विरुद्ध बहुत सारी कविताएं रचना की है। आइए यहाँ पर सुनते हैं संत कवि भीम भोई जी के द्वारा रचित एक भजन, और जिस भजन के अंतर्गत वो हमें ये सूचित करते हैं कि भले मेरा जीवन नर्क में हो, लेकिन जगत का उद्धार हो।

0: आइए अभी चलते हैं आधुनिक युग की तरफ। यद्यपि ब्रिटिश काल से ही आधुनिक युग प्रारंभ होता है, किंतु अंग्रेजी का मोह होने के साथ ही साथ प्राचीन प्रांतीय साहित्य और संस्कृत से साहित्य पूरी तरह अलग नहीं हुआ। इस काल के प्रधान कवि राधानाथ राय हैं। आधुनिक युग को कुछ लोग राधानाथ युग भी कहते हैं। अभी बात करते हैं उड़िया उपन्यास सम्राट फकीर मोहन सेनापति जी के बारे में। उपन्यास में ये बेजोड़ हैं। उनकी कृति प्रायश्चित का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। इस काल के एक और प्रधान कवि मधुसूदन जी हैं। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने भक्ति परक कविताएं भी लिखी है। इस काल में काव्य उपन्यास और गल्प के समान नाटकों पर भी लोगों की दृष्टि पड़ी। नाटककारों में प्रधान रामशंकर राय हैं। उन्होंने पौराणिक ऐतिहासिक सामाजिक गीति नाट्य प्रहसन और यात्रा आदि भिन्न भिन्न विषयों पर रचनाएं की है। राधानाथ युग के अन्य प्रसिद्ध कवि है गंगाधर मेहर, पल्ली कवि नंद किशोर वल, विश्वनाथ कर, व्यंग्यकार गोपाल चंद्र प्रहराज आदि। इसके उपरांत गोपबंधु दास ने सत्यवादी युग का प्रवर्तन किया। वो अक्सर कहा करते थे,
1: मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चले जानतु पिठी रे। मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चले जानतु पिठी रे। देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़।
0: इसका मतलब यही है कि मेरा तन मन धन सब देश के सेवा के लिए है। पद्मचरण पटनायक, नीलकंठ दास तथा गोदावरी मिश्रा आदि इस युग के प्रधान साहित्यिक थे। इस युग में पद्मचरण पटनायक, कवियत्री कुंतला कुमारी सावत छायावादी साहित्यकार और लक्ष्मीकांत महापात्र हास्य रसिक हैं। सत्यवादी युग के बाद रोमांटिक युग आता है। इसके प्रधान कवि मायाधर मानसिंह है। कालंदे चरण पाणिग्राही, वैकुंठ नाथ पटनायक, हरिहर महापात्र, शरद चंद्र मुखार्जी, आनंद शंकर राय ने सबुज कवित्व से सबुज युग का श्री गणेश किया। वासंती उपन्यास इनके सम्मिलित लेखन का फल है। इसके बाद प्रति युग या अत्याधुनिक युग आता है। लेकिन यहाँ पर सुनते एक बहुत ही अच्छा गाना, जो गाना हमें ये कहेगा कि उड़ीसा की मिट्टी कितनी अच्छी है। आइए सुनते हैं।

सच्चिदानंद राउत राय इस युग के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी रचनाओं में पल्ली चित्र, पांडुलिपि आदि प्रधान है। आधुनिक समय में उपन्यासकार गोपीनाथ महांति, कानूचरण महांति, नित्यानंद महापात्र, कवि राधा मोहन गढ़ नायक, शूद्र गाल्पिक, गोदावरीश महापात्र आदि हैं। तो आइए सुनते हैं कवि सच्चिदानंद राउत राय जी के द्वारा रचित मातृभूमि को सम्मान देते हुए ये गीत।

ये गाना यही कहता है, भले मेरा गांव का नाम भूगोल और इतिहास में नहीं है, लेकिन मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है और मैं अपना अंतिम सांस भी इसी गांव में ही लूंगा। 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी अतुल्य भारत, जहां पर हम बात कर रहे हैं अभी उड़ीसा राज्य के बारे में। इस अत्याधुनिक युग में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को पूर्व में काशी भी कहा जाता था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी रहा। प्राचीन काल में हजारों वर्ष तक बौद्ध धर्म यहाँ फलता फूलता रहा। बौद्ध धर्म की तरह जैनों के लिए भी यह जगह काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम शताब्दी में यहाँ चेदी वंश का एक प्रसिद्ध जैन राजा खारवेल हुए थे। इसी तरह 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस प्रकार भुवनेश्वर वर्तमान में एक बहुसांस्कृतिक शहर है और इसको टेंपल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म यहाँ उन्नत अवस्था में था। बौद्ध धर्म की तरह यहाँ जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ भी मिलती है। उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाओं में जैन राजा खारवेल की बनवाई कलाकृतियां मिली है। उदयगिरी और खंडगिरी प्राचीन नाम है स्कंदगिरी। इन पहाड़ियों में पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई हुई हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्रसिद्ध चेदी राजा खारवेल जैन मुनियों के निवास के लिए करवाए थे। यहाँ करीबन 1 से 20 गुफाएं तक देखने को मिलती है। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। इनमें से कुछ गुफाएं 5वीं सदी से संबंधित हैं। यहाँ पत्थर को काटकर बनाई गई वाराह अवतार की मूर्ति पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक मानी जाती है। गुफा संख्या 4, जिसे रानी गुफा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक आकर्षक गुफा है। गुफा संख्या 10 में, जिसे गणेश गुफा भी कहा जाता है, वहाँ गणेश की मनमोहक मूर्ति है। इस गुफा के दरवाजे पर 2 हाथियों को दरवान के रूप में स्थापित किया गया है। उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा में शिवलिंग है, जिसकी पूजा स्थानीय लोग आज भी करते हैं। इन 20 गुफाओं के अलावा गिरी शिखर पर ध्वंसावशेष भी दिखते हैं। जन श्रुतियों के अनुसार आज भी इसे अशोक का महल कहा जाता है। आइए थोली के बारे में जानते हैं। थोली भुवनेश्वर के दक्षिण में राजमार्ग संख्या 203 पर स्थित है। ये वही स्थान है जहां अशोक कलिंग युद्ध के बाद आगमन

पश्चाताप की अग्नि में जले थे। इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया और जीवन भर अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार किया।

काशी के प्रसिद्ध पत्थर स्तंभों में एक यही है। इस स्तंभ में अशोक के जीवन दर्शन का वर्णन किया गया है। यहाँ का शांति स्तूप भी घूमने लायक है, जो धौली पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ है। इस स्तूप में बुद्ध जी की मूर्ति तथा उनके जीवन में संबंधित विभिन्न घटनाओं की मूर्तियां स्थापित है, जैसे कि भुवनेश्वर को टेंपल सिटी कहा जाता है। कुल मिलाकर के 50 ऐसे मंदिर हैं जिसको पर्यटक देखने के लिए आते हैं। उनमें से राजा रानी मंदिर है, जो कि 11वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर में शिव और पार्वती की भव्य मूर्ति है। इस मंदिर के नाम से ऐसा लगता है कि मानो इसका नाम किसी राजा रानी के नाम पर रखा गया है, लेकिन एक खास प्रकार के पत्थर से बना है, जिसे राजा रानी पत्थर कहा जाता है। इसी कारण इस मंदिर का नाम राजा रानी मंदिर है। राजा रानी मंदिर से कुछ ही दूर पर ब्रह्मेश्वर मंदिर है और मुक्तेश्वर मंदिर। बहुत सारे ऐसे पौराणिक मंदिर वहाँ पर है। मुक्तेश्वर मंदिर में परमेश्वर मंदिर भी है, जो कि इस क्षेत्र के पुराने मंदिरों में सबसे आकर्षक है। इसके जगमोहन में जाली का खूबसूरत काम किया गया है और इसमें आकर्षक चित्रकारी भी की गई है। आइए अभी चलते हैं लिंगराज मंदिर की ओर। इस मंदिर समूह का निर्माण सोमवंशी वंश के राजा जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और ये ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। यहाँ पर शिव जी के पूजा की जाती है। मंदिरों के अलावा आप यहाँ पर प्लानिटोरियम, चिड़ियाघर, राज्य संग्रहालय भी देख सकते हैं। प्लानिटोरियम जो है पठानी सामंत प्लानिटोरियम के नाम से जाना जाता है। पठानी सामंत जी के बारे में अगर हम बताएं तो पठानी सामंत जी को कहा जाता था महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र। पठानी सामंत नाम से वो जाने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के अवस्थिति के बारे में, साथ ही साथ दैनिक वार्षिक आवर्तन एकदम सटीक रूप से वो गणना कर सकते थे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के सही समय निर्धारित करने में वो माहिर थे, इसीलिए उनको महामहोपाध्याय की उपाधि मिली थी। वो ग्रह नक्षत्रों की दूरता को एक बाम्बू पाइप के माध्यम से नाप के डिस्टेंस बता सकते थे। उनके सारे तकनीकी रिसर्च ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखा है और उस किताब का नाम है सिद्धांत दर्पण। इसमें करीबन 2000 से भी ज्यादा पद्य है। उन्होंने बहुत सारे यंत्रों की भी रचना की है, जैसे कि गोल यंत्र, सूर्य घड़ी, शकुदंड, उलम्बी चक्र, मान यंत्र, खगोल यंत्र। सूर्य घड़ी के माध्यम से सूर्य की गति के अनुसार समय निर्धारण करने के लिए सूर्य घड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने जाना भुवनेश्वर के बारे में, टेम्पल सिटी के बारे में। अभी हम चलेंगे पुरी की ओर, यानी कि जगन्नाथ धाम, भारतवर्ष के चार मुख्य धामों में से एक धाम की ओर।

इस गाने का अर्थ यही कहता है कि भगवान जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा आयोजित होता है तो किस प्रकार से भक्ति में लोग गाना गाते हैं। ये आप सुन रहे थे संबलपुरी लोक संगीत। आइए हम चलते हैं श्री क्षेत्र की ओर, श्री क्षेत्र यानी कि पुरी के ओर। पुरी उड़ीसा प्रांत का एक जिला है। भारत के चार पवित्रतम स्थानों में से एक है पुरी, जहां समुद्र इस शहर के पांव धोता है। 65 मीटर ऊंचा जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर नीलगिरी पहाड़ी के आंगन में बना है। चारों ओर से 20 मीटर ऊंची दीवार से घिरे इस मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं। मंदिर के शेष भाग में पारंपरिक तरीके से बना सहन, गुफा, पूजा कक्ष और नृत्य के लिए बना खम्भों वाला एक हॉल भी है। सड़क के एक पार पर गुंडीचा मंदिर के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी का ग्रीष्मकालीन मंदिर भी है। गार्डन हाउस के रूप में प्रसिद्ध गुंडीचा मंदिर एक छोटा मंदिर है, जहां रथ यात्रा के दौरान मूर्तियों को

रखा जाता है। आइए जानते हैं अभी पुरी के समुद्री तटों के बारे में। पुरी के समुद्री तटों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बहुत ही आनंददायक होते हैं। पुरी से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर साक्षी गोपाल मंदिर है। यहाँ पर केवल अनाला नवमी के दिन श्री राधा जी के पवित्र पैरों के दर्शन किए जा सकते हैं। हिंदू नववर्ष की खुशी के लिए कुछ बात। हिंदू नववर्ष की खुशी में यहाँ चंदन यात्रा निकाली जाती है। पूरे भारतवर्ष और विश्व के पर्यटकों के लिए रथ यात्रा आकर्षण के प्रमुख केंद्र है।

ये यात्रा जून माह में आयोजित होती है, जो पूरी रथ यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। श्री जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को वार्षिक अवकाश पर मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे मंदिर यानी कि गुंडीचा घर में ले जाया जाता है। रथ यात्रा और नव कालेवाड़ा पुरी के प्रसिद्ध पर्व है। ये दोनों पर्व जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति से संबंधित है। पुरी रथ यात्रा का त्योहार साल में एक बार मनाया जाता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए तीर्थयात्री देश के विभिन्न कोने से आते हैं।

रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास में प्रसिद्ध शिव मंदिर लोकनाथ मंदिर भी है। यहाँ के निवासियों में ऐसा विश्वास है कि भगवान राम ने इस जगह पर अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये रही पुरी की बात, लेकिन पुरी से कुछ ही दूरी पर सन टेम्पल यानी कि कोणार्क स्थित है। आइए जानते हैं कोणार्क के बारे में। कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी नरेश नरसिंहदेव प्रथम अपने एक विजय के स्मारक स्वरूप करवाया था। 1200 कारीगर 12 वर्ष तक निरंतर लगे रहे। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में लिखा है कि इस मंदिर में उड़ीसा राज्य के 12 वर्ष की समूची आय लगी थी। उनका ये भी कहना है कि ये मंदिर नवी शती में बना था। इस मंदिर के निर्माण से संबंधित एक दंत कथा प्रचलित है कि संपूर्ण प्रकार के निर्माण हो जाने पर शिखर के निर्माण की एक समस्या उठ खड़ी हुई। कोई भी कारीगर उसे पूरा कर न सका। तब मुख्य कारीगर विश्व महाराणा के धर्मपद नामक 12 वर्षीय पुत्र ने यह साहसपूर्ण कार्य कर दिखाया। उसके बाद उसने ये सोचा कि उसके इस कार्य से सारे कारीगरों की अपकीर्ति होगी और राजा उनसे नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर उसने उस शिखर से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर में कुंभर पत्थर नामक चुंबकीय शक्ति से युक्त पत्थर लगा था। उसके प्रभाव से इसके निकट से समुद्र में जाने वाले जहाज और नौकाएं खींची चली आती थी। बहुत सारे कहानी इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। पुराणों में इस सूर्य मूर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोणादित्य के नाम से किया गया है। कहते हैं कि रथ सप्तमी को साम ने चंद्रभागा नदी में स्नान कर उक्त मूर्ति प्राप्त की थी। आज भी उस तिथि को वहां लोग स्नान और सूर्य की पूजा करने आते हैं। मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्वी कोने में सूर्य देव की पत्नी माया देवी को समर्पित एक मंदिर भी है। यहाँ नव ग्रहों वाला अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित मंदिर भी है। आइए अभी कोणार्क से डायरेक्ट हम चलते हैं उड़ीसा के और कुछ प्रमुख शहरों की ओर। अभी चलते हैं राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को नदियां और पर्वतमाला घेरे हुए हैं। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक कारखाना यहाँ भी स्थित है। यहाँ राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान राउरकेला भी स्थित है, जो कि भारत के NITs में से एक है। अभी बात करते हैं संबलपुर के बारे में। संबलपुर भारत के उड़ीसा प्रांत के एक जिला है। इसका नाम समलेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा है, जो शक्ति रूपा है और इस क्षेत्र में पूज्य है। संबलपुर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के बीच स्थित दोनों प्रांतों को जोड़ता है। महानदी के बाएं किनारे पर स्थित यह नगर एक द हीरो के व्यवसाय का केंद्र था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सूती और रेशमी बुनावट की वस्त्र कारीगरी, इकत, आदिवासी समृद्ध विरासत और प्रचुर जंगल भूमि के लिए प्रसिद्ध है। संबलपुर ओडिशा के जादुई पश्चिम भाग का प्रवेश द्वार के रूप में सेवारत है। यह राज्य के उत्तरी प्रशासकीय मंडल का मंडल मुख्यालय है, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक और शिक्षा केंद्र है। हीराकुद उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में ईव और महानदी के संगम पर स्थित है। यह स्थान का प्रसिद्धि के कारण हीराकुद बांध है। यहाँ सोन, धूल एवं हीरा भी प्राप्त होता है। हीराकुद की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हीराकुद बांध संसार के विशालतम तथा सबसे लंबे बांधों में से एक है। आइए बात करते हैं कटक के बारे में। बारवाटी किला के बारे में बात करते हैं। महानदी के किनारे बना ये किला खूबसूरती से तराशे गए दरवाजों और 9 मंजिला महल के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण गंग वंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। युद्ध के समय नदी के दोनों किनारों पर बने किले इस किले की रक्षा करते थे। वर्तमान में इस किले के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी है। 5 एकड़ में फैले इस स्टेडियम में 30,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। यहाँ खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। कटक जिले में धवलेश्वर द्वीप भी है। इस द्वीप के चारों ओर महानदी है। इस द्वीप को जाने के लिए ज्यादातर नौका या झूला पुल की इस्तेमाल की जाती है। ये झूला पुल एशिया के सबसे लंबा झूला पुल है। अभी आते हैं चिलिका झील के ओर।
चिल्का झील ओडिशा प्रदेश के समुद्री अप्रवाहित जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिलिका झील के नाम से और चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अनूप एवं उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती के आकृति में पूरी जिले में स्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। ये समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। तो यहाँ पर हमने जाना उड़ीसा राज्य के बहुत सारे पर्यटन स्थलों के बारे में। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

अभी इस खूबसूरत गाने के बाद आइए जानते हैं खान पान के बारे में। चावल ओडिशा का प्रधान भोजन है। पखाल भात यहाँ का एक लोकप्रिय भोजन है। यह भोजन एक दिन पहले के चावल को आलू के साथ तलकर बनाया जाता है। इसके साथ आम, आलू भरता, बड़ी चूरा जो कि एक मसालेदार व्यंजन है, इसके साथ खाया जाता है। साथ ही साथ पाई साग, यह साग उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ छत्तू तरकारी यानी कि एक तीखा भोजन है जो कि मशरूम से बनता है। उड़ीसा में हर खाने में पंचफोरन मिलाने का रिवाज है। ये एक खास तरह का मसाला होता है जिसे हर भोजन में मिला दिया जाता है। इसे भोजन में मिलाने से खाना स्वादिष्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ तड़का, डालमा, पीठा तथा नारियल के तेल में पूरी बनाया जाता है। आइए जानते हैं कुछ उत्पादों के बारे में। यहाँ पत्थर से बने बहुत खूबसूरत सामान मिलते हैं। इन सामानों में मूर्तियाँ से लेकर बर्तन तक शामिल है। पत्थरों से बने वस्तुओं के अलावा सिंक से बने वस्तुएं जैसे कि पेन स्टैंड, कंघी, इस प्रकार सजावटी वस्तुएं भी मिलते हैं। और साथ ही साथ पिपली के हस्तकला भी प्रसिद्ध है जिसको चांदुआ के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं उड़ीसा के त्योहारों के बारे में। इसका एक अनोखा त्योहार अक्टूबर या नवम्बर में मनाया जाने वाला है, बोईता बंदना, जिसमे नौकाओं की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ रज उड़ीसा का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व के दौरान घर की महिलाएं, बहनें, बेटियां नए वस्त्र पहनते हैं और साथ ही साथ झूला में झूलते हैं और उस 3 दिन तक वो कोई भी काम नहीं करते हैं। इस पर्व के दौरान बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाया जाता है। इस पर्व को 3 दिन मनाया जाता है। इसके अलावा होली, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, दीपावली, ईद, रमजान आदि बहुत सारे पर्व इकट्ठे होकर के सभी मनाते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति ने उड़ीसा को कई रत्न दिए हैं, उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उड़ीसा ने कई रत्न दिए हैं।

जिनमें प्रमुख हैं सुभाष चंद्र बोस, गोपबंधु दास, हरे कृष्ण मेहताब, बख्शी जगबंधु। लेकिन आज मैं बात करूंगी दो ऐसे महान देशभक्तों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बात करते हैं भारत की किसी भी स्वतंत्रता

संग्राम से पहले एक वीर पुत्र ने, जिनका नाम था जय राजगुरु, अंग्रेजों का डट के सामना किया था अपने पाइकों को लेकर के, यानी कि 7000 सेना के साथ। लेकिन अंत में देशद्रोहियों के वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो दिन था 6 दिसंबर 1806 का दिन। जय राजगुरु जी को अमानुषिक तरीके से हत्या किया गया था और वो बन गए हमारे देश के प्रथम शहीद। वो अक्सर कहा करते थे, मैं जीवन दे दूंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। इसीलिए उड़ीसा के लोग ये कहते हैं, जइया पछे जीवन देला नुआई नहीं मथा, अर्थात उन्होंने जीवन दे दिया लेकिन सर नहीं झुकाया। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस महान देशभक्त की वीरता को ना सिर्फ उड़ीसा, पूरा भारत मिलके सलाम करता है।

अभी जानते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने बचपन में ही प्राण न्योछावर कर दिए। वो थे बाजी राउत, जिनका उम्र 13 साल था। वो है भारतवर्ष के सबसे कम उम्र के शहीद। आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। बाजी राउत का जन्म नीलकंठपुर उड़ीसा में 1925 को हुआ था। वो अपने गांव के पास ब्राह्मणी नदी के नौचालक और प्रजा मंडल पार्टी के स्वयंसेवक थे। रात था 10 दिसंबर 1938। ब्रिटिश सेना वहां पहुंची और बाजी राउत को नदी पार करने के लिए कहा। उस वक्त निडर होके उस नन्हे वीर ने उन्हें इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी भूमि पर अंग्रेज कदम रख पाए। इस पर गुस्से में आकर एक अंग्रेज सिपाही उन्हें वहीं गोली मार दी। गहरी चोट आने के बावजूद भी उन्होंने गांव वालों को आगाह किया तथा उसके बाद अपने प्राण त्याग दिया। भारत माता की इस वीर पुत्र को आज हम शत शत नमन करते हैं।

0: तो इस प्रकार हमने जाना उड़ीसा राज्य के बारे में, जिस पावन राज्य पर चंडाशोक ने कदम रखते हुए धर्माशोक में परिवर्तन हो गए थे। साथ ही साथ प्रथम शहीद यहीं से पैदा हुआ था और सबसे कम उम्र के वीरत्व का प्रदर्शन करते हुए बाजीराव भी शहीद हो गया था। 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी, अतुल्य भारत, जय हिंद।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं खाबों के सफर इस कार्यक्रम में हम लोग 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज सुनाते हैं और कुछ गजल्स भी सुनाते हैं। तो आज हम लोग सुनाएंगे एम अल्फाबेट के सारे गाने। जी हाँ, जो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं एम अल्फाबेट वाले, वो आपको आज सुनाएंगे। लेकिन शुरू करेंगे गजल से। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसको खास हम लोग अभी सुनाने वाले हैं, जैसे कि ये।

0: और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं पल्लवी जी, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में।
1: हेलो, थैंक यू सो मच
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा, पहली बार आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और हमारे सभी श्रोताओं से रूबरू हो रहे हैं आपकी आवाज से, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए।
1: मेरा नाम पल्लवी है, मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र शहर से हूँ। ये माँ भारता की लैंड है, जैसे कि आप सब जानते हैं। मैं प्रोफेशन से एक शेफ हूँ, पेस्ट्री शेफ हूँ। मैं एक यहाँ पे बिजनेस रन करती हूँ और लोगों के लिए डिजर्ट्स बनाती हूँ, बहुत सारे सुंदर सुंदर केक्स, चॉकलेट्स। अभी सारे खा मीठे खाए और धीरे धीरे सब काफी कुछ बढ़ने वाला है जी।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी सुनकर सोच रहे होंगे कि केक हमें भी मिल जाए तो अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में। और मैं जिस गजल के बारे में बात कर रहा था, ये एल्बम क्राई फॉर क्राई करके एल्बम थी, जगदीश सिंह साहब ने इसे संगीत से संवारा है और नंदलाल पाठक ने इसे लिखा है, सीजा रॉय ने इस गजल को गाया है। तो चलिए पल्लवी जी, मैं आपके लिए खास ये पहला गजल कार्यक्रम की शुरुआत में जो एम अक्षर से शुरू होता है उसे सुनाना चाहूंगा। बहुत ही प्यारी सी गजल है, सीजा राय की खूबसूरत आवाज में जगदीश सिंह का खूबसूरत संगीत है। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में ये पहला गजल आपके नाम।

0: बहुत ही प्यारा सा गजल आपने सुना, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और पल्लवी जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: जी जी जी जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, ख्वाबों के सफर में। मैं हूँ आपका हम सफर और अब ले चलता हूँ मैं एम अक्षर वाले गीतों की तरफ। एक गाना है जो 1961 में एक एल्बम आई थी, आया सावन झूम के, बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी, और इसमें एक गाना है एम अक्षर वाला जैसे कि ये।

0: जी हाँ, माजी चल वो माजी चल। पल्लवी जी कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा। ये सॉन्ग भी हम जब छोटे थे हम पूरी फैमिली साथ में ही मूवी देखने गए थे और हम सब इस सॉन्ग को सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे। बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है वो फील। आज भी हम जब फैमिली पिकनिक पे जाते हैं लेक के पास और नाव में बैठे होते हैं तो ये सॉन्ग जरूर मेरे फादर प्ले करते हैं और हम सब उसी फील में खो जाते हैं, जैसे उमा जी चल। मतलब बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जैसे सन हमारे ऊपर आ रहा होता है बस हम सारे 5 मिनट पापा का ऑर्डर होता है, कोई नहीं बोलेगा और इस गाने को बस सबने फील करना और एंजॉय करना, फिर हम साथ में बस थोड़ा चाय सिप कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत खा रहे होते हैं, ये सॉन्ग चल रहा होता है। तो ये बहुत स्पेशल सॉन्ग है हमारी फैमिली के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। चलिए पल्लवी जी, आपका स्पेशल सॉन्ग है तो हमें भी अच्छा लगेगा, स्पेशल सॉन्ग है तो हमें प्ले करने में अच्छा लगेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इसमें जो समुन्द्र का किनारा है या पिकनिक स्पॉट जैसी वाली बात आपने कही, तो इसके साथ साथ शाम में जब अगर समुन्द्र के किनारे पे आप समुन्द्र के किनारे पे बैठ कर नजारे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है एकदम क्या कहते हैं शांत हो जाता है और एक अलग फील कराता है। तो आइए, आनंद बख्शी साहब का लिखा यह गीत, मोहम्मद रफी साहब का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा आया सावन झूम के इस एल्बम से ये गीत है। तो इस गीत का आनंद उठाएंगे। और कहा जाता है कि ये जो एक फिल्म है आया सावन झूम के, एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी इसमें बताई गई है। जीवन के जो उतल पुतल है, उतार चढ़ाव है, जिसमें एक गलती से एक व्यक्ति जो है बूढ़े व्यक्ति को मार देता है और बाद में पता चलता है उस व्यक्ति को कि ये जो व्यक्ति गलती से मारा गया है वो उनकी प्रेमिका के पिता है। तो वही इस फिल्म के कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरुपमा रॉय, राजेंद्र नाथ, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रघुनाथ जालानी ने। तो दोस्तों आइए इस गाने का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: चल।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। और काफी अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगला गाना है मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। पल्लवी जी कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे
1: जी। जी जी, क्या आपने ये गाना सुना है कभी?
2: नहीं सुना हमने।
1: अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत मस्ती भरा गीत है और एकदम जैसे कि चुलबिल जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी सी मस्ती है इस गाने में। और ये आन 1952 की एक फिल्म है, उसमें ये गाना है, शकील बदायूं साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है और नौशाद साहब ने इस फिल्म में यानी इस गाने को संगीत से सजाया है। तो ये फिल्म आन जो है एक गरीब ग्रामीण की कहानी है, जय नाम के एक कैरेक्टर का कहानी है जो एक खेल में राजकुमार को हराता है, जिससे राजकुमार परेशान होता है और बाद में जय को शमशेर की बहन से प्यार होता है और उसे अपने प्यार के लिए राजी करने की कोशिश करता है। तो एक प्रेम कहानी है और वो चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो इस फिल्म के कलाकार है दिलीप कुमार, निम्मी, नादिरा, प्रेमनाथ और मुकेश। महबूब खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो पल्लवी जी आगे बढ़ते हैं और इस गाने को सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं और पुराने जो गाने हैं उसमें एक मेलोडी है जो हमारे दिल को छू लेती है। आज के समय में जो गाने हैं और पहले के जमाने में गाने हैं उसमें थोड़ा सा अंतर जरूर है। और आज भी हम लोग पुराने फिल्मी गीतों को सुनते हैं और नए सुनते हैं, बेसिक जो डिफरेंस है वो हमें पता ही चल जाता है। पल्लवी जी बताइए, आपको कैसा लगता है पुराने गीत या फिर अभी वाले गीत में क्या डिफरेंस है?
1: पुराने वाले गीत में एक अलग ही मस्ती होती थी, एक अलग ही प्योरिटी होती थी। मतलब जब उसको सुनते थे तो ऐसे मन करता था कि आंखें बंद करके उस गाने को फील करा जाए। आजकल के जो गाने हैं उनका कोई सेंस ही नहीं होता, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है। बल्कि आजकल के सारे सिंगर्स पुराने गाने को ही लेकर रीमिक्स करते हैं, क्योंकि पुराने वाले गानों की भी बात ही अलग है। हमारे इनफैक्ट हमारे बुजुर्गों को देखा जाए, वो आजकल के नए गाने सुनते ही नहीं है। पुराना जैसे ही रेडियो पे आ जाए तो कहते हैं अब चलाया सही गाना कोई। उनको कोई पसंद ही नहीं आता इस जमाने के, तो उनको तो लगता है ये क्या सुनते हैं आजकल के बच्चे।
0: जी जी जी जी,
1: तो पुराने वालों की तो बात ही अलग है। बिल्कुल
0: सही बात है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया। एक फिल्म आई थी 1968 में जिसमें एम अक्षर का गाना है जैसे कि ये।

जी। और ये फिल्म है अनोखी रात, जिसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी बरसात की रात एक घर में आश्रय लेते हैं और वहाँ एक डाकू से उनकी मुलाकात होती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। अर्षित सेन का डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी। संजीव कुमार, अरुणा ईरानी, जाहिद, तरुण बोस इस फिल्म के कलाकार रहे और इस फिल्म का ये गाना जो है इंदिवर साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर जी ने इसे आवाज दिया था। रोशन साहब का खूबसूरत संगीत से सजा। चलिए अब इस गीत का आनंद उठाते हैं। महलों का राजा मिला। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जी ख्वाबों का सफर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम और हमारे साथ खास मेहमान पल्लवी जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं। आशा करता हूं आप बहुत सारे ये जो एम अक्षर वाले गीत हम लोग 50s एंड 60s के गाने सुना रहे हैं, इन गीतों को सुनकर आप भी एंजॉय कर रहे होंगे पल्लवी जी।
1: बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही टाइम पे पहुंच गए हैं और फिर से पुराने गाने सुनने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी जी। अच्छा अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: हम सुनना चाहेंगे मैं चली मैं चली।
0: जी जी जी। अच्छा अच्छा थोड़ा गा के सुनाइए आप।
1: जी अब आज तक नहीं अच्छी नहीं है, बट कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा।
0: जी जी जी।

चलिए, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि एक नए आवाज में जब गाना सुनते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो बहुत ही प्यारी सी जो गीत है, प्यारा गीत आपने याद कराया। पड़ोसन फिल्म जो कॉमेडी फिल्म थी 1968 का, मस्ती भरा फिल्म था जिसमें बहुत ही अच्छे कलाकार थे जैसे कि महमूद अली, किशोर कुमार, सुनील दत्त और सहरा बानू और कैस्टो मुखर्जी। इनका जो एक्शंस है उसे उनको देख के ही खुशी हो जाती, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। तो ज्योति स्वरूप इस फिल्म के डायरेक्टर थे और ये एक बहुत ही मस्ती भरा गीत है और इस गीत को भी हम लोग सुनते हैं जैसे युवा अवस्था में ये गीत जैसे गाने वाली फील आती है। तो राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था इस गीत को, आशा भोसले ने गाया है, आशा भोसले, लता मंगेशकर, इन लोगों ने मिलकर दोनों ने गाया है इस गीत को। राहुल देव बर्मन का खूबसूरत संगीत से सजा अगला गाना ये आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं और पल्लवी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं 1962 की एक फिल्म आई थी जैसे कि नाम था आशिक। ये जो फिल्म है एक प्रताप नाम के व्यक्ति के ऊपर बनाया गया है और कुछ ऐसी चीजें हैं, परिवार की बातें इसमें बताई गई हैं, परिवार में जो कश्मकश आती है प्रेम को लेकर वो चीजें ऋषिकेश मुखर्जी जो है एक फैमिली ड्रामा को बताने की कोशिश उन्होंने की थी। राज कपूर, पद्मिनी, नंदा, लीला चिटनीस और अभि भट्टाचार्य पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म आशिक। तो इसमें एक गाना है जैसे कि ये,
1: मैं आशिक हूँ बहारों का।
0: जी हाँ, मैं आशिक हूँ बहारों का, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत मस्ती भरा गीत है, शैलेंद्र साहब का लिखा, मुकेश जी का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत। आशिक इस एल्बम का ये अगला गाना अभी आपके लिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आइए आगे बढ़ते हैं खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपका हम सफर सनी, और आज के हमारे खास मेहमान पल्लवी जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं। और जैसे उन्होंने गीत अभी कुछ देर पहले मैं चली ये शब्द यूज किया था, सेम शब्द जो है शुरुआत में इस गाने में भी है जो एक फिल्म आई

1962 में प्रोफेसर। जी हाँ, इस फिल्म का ये भी गाना थोड़ा सा लिरिक्स पहले वाले मिलते हैं, लेकिन फिर भी गाने का फील बिल्कुल अलग किया है शैलेंद्र साहब ने। लता और रफी साहब ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गाना जैसे कि अभी।

जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो प्रोफेसर नाम का 1962 में रिलीज हुई थी, शमी कपूर, कल्पना महिमा, ललिता पवार और टुंटुर पर पिक्चराइज किया गया था और लेख टंडन इसके डायरेक्टर रहे। और एक युवा व्यक्ति की कहानी इसमें है, उनके चाची से वो बहुत परेशान रहते हैं और ये चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। चाची को एक एंटी करेक्टर दिया हुआ है और युवा पुरुष जो है वो इस फिल्म में उनके चाची के नेगेटिव रोल को देखकर बड़े परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी शुरुआत में जो चीजें बताई गई और फिर हॉस्पिटल वाली बातें इसमें बताई गई हैं और बाद में हैप्पी एंडिंग दिखाया गया। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो।

0: जी पल्लवी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे। कब से मैं बहुत अच्छी ही हूँ।
0: अच्छा, अब आखिरी गाना कौन सा आप सुनाना चाहेंगे? एम अक्षर वाला।
1: एम अक्षर वाला
0: जी
1: पुराना ही होना चाहिए।
0: जी
1: अभी मैं देखूं जिस ओर सखी ने,
0: जी जी जी
1: ये भी लता मंगेशकर का है।
0: जी, मैं देखूं जिस ओर सखी रे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये गीत है अनीता इस एल्बम से जो 1967 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक जो है मनोज कुमार का डबल रोल है इसमें, और एक भूल भुलैया वाली जो कहानी है वो इसमें दिखती है, और इसमें एक दुर्घटना को दिखाया गया है, और उसके बाद वो हम शक्ल वाली जो कहानी है हर फिल्म में रहता है वो चीजें इसमें बताने की कोशिश की गई है राज खोसला जी ने। तो चलिए इस फिल्म का ये गीत अभी आपको सुनाते हैं। मनोज कुमार, साधना, आईएस जवान और धुमाल पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म, और इसमें ये गाना जो है अपने आप में थोड़ा सा अलग है और एक अलग फील देता है। तो चलिए इसी के साथ मैं कहूंगा कि हमारे साथ आज के इस शो में पल्लवी जी आप आए और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पे आखिरी में आप क्या बताना चाहेंगे।
1: जैसे कि हम जो शो सुन रहे हैं खागो का सफर, और जैसे कि रमेश जी एंड में कहते हैं हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तो मैं भी सबको कहूंगी स्टे हैप्पी, लिव योर लाइफ लाइक अ किंग, एंड अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए, एफएम को फॉलो करते रहिए, एंड यस स्टे हैप्पी।
0: जी पल्लवी जी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया हमारे श्रोताओं के लिए, और बहुत सारी बातें आपने की, बहुत अच्छे अच्छे गीत भी आपने सुनाए, और एम अक्षर वाले जो गाने हैं बहुत ही प्यारे गाने थे, और एक गाना जो आपका पसंदीदा था मैं चली, और दूसरा वो माजी रे जिसमें आपने अपनी फैमिली की बातें याद कराई, हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी तरह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते रहिए, आशा करता हूँ आगे भी आप हमारे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में। चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से पल्लवी जी के लिए ये चंद तालियां हमारी ओर से, और आप सभी को फिर से कहना चाहूंगा आप खाबो के सफर इस कार्यक्रम को सुनकर जो मैसेजेस करते हैं, जो प्यार दिखाते हैं, वो इसी तरह बनाए रखिए। ढेर सारी दुआएं, सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा आग से बैठा पानी का।

0: से चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथेरा लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगरे से बट पर वोट मतलब क्या? माथेरा लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी
1: पहले माजे माँ।

संगीत की दुनिया के साथ अब मेरा रिश्ता अपने 50 साल पूरे कर रहा है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कई यादें उभर रही हैं। कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं, खास तौर पे याद आ रहे हैं वो लोग जिनके साथ मैंने गाया, जिन्हें गाते हुए सुना। ऐसे सुरीले लोगों को मैं अपने सुरों की श्रद्धांजलि के अलावा दे ही क्या सकती हूँ। मैं ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं इन महान कलाकारों से अच्छा गा सकती हूँ, बल्कि ये कहूँगी कि इन 50 सालों में मैंने उनसे जो सीखा है उसे ही पेश करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। बचपन में या तो मैं अपने पिताजी को गाते हुए सुना करती थी, या मुझे पसंद था सहगल साहब का गाना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनसे मिलूं, बातें करूं, उनका गाना सुनूं और अपना गाना सुनूं। ये सपना सपना ही रह गया, पर उनके सुरों का असर 50 सालों से मेरे संगीत के साथ साये की तरह चल रहा है।

मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: छेड़ो मन का बाजा तुम
1: अपनी घर की राजा तुम छेड़ो मन का बाजा तुम
0: आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: यानी कि मैं किन मान्यताओं को लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये तो पूरा का पूरा मेरी सोच जो है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन जीने का जो तरीका है वो मेरी मान्यताओं पर ही खड़ा है। कैसे अब उनको देखना है और कैसे उन्हें बदलना है, ये पूरी श्रृंखला का हमारा जो है वो आस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आज बातचीत करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स पर एक बार फिर से, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवारी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक और लहर चल पड़ी है सिस्टर शिवानी, और हमारे पास जिस तरह के मेल्स भी पहुंचने लग गए हैं, बार बार हम यही कहते हैं आप ही का मंच है तो फिर अपने मंच पर खुले मन से बात करते हैं, तो अब ढेरों बिलीफ सिस्टम्स आने लग गए हैं। और फिर ये कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है या ये ट्रुथ है। आपने एक बात हमें कही थी, अगर पिछली कड़ी को याद करें, कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग जो है वो ठीक है, अच्छी की फीलिंग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अनकम्फर्टेबलनेस नहीं है, मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक है। और अगर मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, चेक द बिलीफ सिस्टम। बहुत से लोगों ने किया है। अब ये बिलीफ सिस्टम जो है, जो जिस पर मैं काम कर रही थी, वो वर्क कैसे करता है, चेंज कैसे करना है, ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा और इस पर हम डेफिनेटली मतलब इस पर डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये बिलीफ सिस्टम, जैसे कोई भी है, अगर मेरा कोई भी बिलीफ है, वो मेरी हैप्पीनेस को कैसे ले लेता है?
1: जो बिलीफ सिस्टम है उसी के आधार पर ही थॉट्स क्रिएट होंगे ना। लेट्स से चलो हमने पिछली बार कई बड़े बड़े बिलीफ्स, छोटे छोटे सिंपल बिलीफ देखते हैं। इवन ए सिंपल बिलीफ लाइक आज के समय में चिंता होना तो नेचुरल है, कि तनाव तो नेचुरल है। अब ये मेरा बिलीफ है कि तनाव तो नेचुरल है, तो सारा दिन में जितनी बार भी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी या टेंशन या वरी, आई विल एक्सेप्ट इट एज
0: ये कुछ गलत नहीं हो रहा है,
1: ये गलत नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है,
0: डिस्टर्बेंस इज ओके,
1: इज ओके। एंड फिर मैं अपने आप को छोटी छोटी बातों में टेंस्ड होना भी परमिशन दे देती हूँ कि इट इज ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अलाउड टू स्मोक, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी उसके बारे में, स्मोकिंग तो मेरे लिए ठीक है, इट्स अलाउड टू डू इट, तो आई डू इट वेरी इजिली। लेकिन जो नहीं करता है तो वो नहीं करता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक। सिमिलरली इफ आई क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम, पीस इज नेचुरल। अभी तक मेरा बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल,
0: एंगर, छोटे छोटे एंगर तो ठीक है ना।
1: अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है एंगर इज नेचुरल, तो फिर मैं गुस्सा करने से पहले दो बार सोचूंगी तो नहीं ना, एंगर इज नेचुरल, तो थॉट कैसी क्रिएट होगी वैसे ही होगी, फिर वो आगे बिहेवियर में आएगी। अब एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एंगर इज नेचुरल के साथ हम कहाँ पहुंचे। गुस्सा करने की हमें आदत सी पड़ती गई और हर बार करके मेरे अंदर ही वो दर्द क्रिएट हुआ। एक दिन के लिए एक्सप्लोर करें एक नया बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इज पीस इज नेचुरल। और कैसे पता चलेगा विच वन इज नेचुरल? जो हमें कंफर्टेबल फील करता है। आज भी कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन हर एक को अच्छा क्या लगता?
0: पीस, शांति मांग ही रहे होते ना, ढूंढ रहे होते।
1: तो अभी हम शांति मांग रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है कि शांति हमें मांगनी है, शांति हमें कहीं बाहर से, खुशी भी हमें बाहर से ढूंढनी है। अब मेरा ये बिलीफ है कि खुशी बाहर मिलती है, तो मैं ढूंढूंगी कहाँ? बाहर ही ढूंढूंगी। मैंने ये तो बिलीफ कभी क्रिएट ही नहीं किया कि खुशी तो मेरी अपनी इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट है। तो जिस क्वालिटी का बिलीफ, उसी क्वालिटी के फिर थॉट क्रिएट होती। तो एक दिन हम एक सिंपल न्यू बिलीफ से एक्सप्लोर करते, पीस इज नेचुरल, एंगर इज अननेचुरल, लेकिन एंगर पे नहीं मनन करेंगे, तो हम कहते पीस इज नेचुरल, पीस इज माई नेचर, हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज माई नेचर। तो ये बिलीफ लेकर अब सारा दिन चलो, तो एक दिन में मैजिक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ हमारे थॉट पर वर्क करेगा। अब मुझे अगर गुस्सा आएगा, या अगर मैं गुस्सा, सी अभी तक गुस्सा आएगा तो गुस्सा आएगा नहीं, अब अगर मैं गुस्सा करूँगी तो आई विल इमिजिएटली टेल माई सेल्फ गुस्सा मेरा नेचुरल नहीं है।
0: ओह अमेजिंग, यू नो, गुस्सा आएगा मतलब कि क्योंकि कोई और कर रहा था,
1: सी हाउ डीप रूटेड इट इज, हाउ डीप रूटेड इट इज, बट नाउ इमिजिएटली वी कैन चेंज। गुस्सा अब जब हम क्रिएट करेंगे तो हम तुरंत अपने आप को कहेंगे दिस इज नॉट नेचुरल। अभी तक पहले मैं कहती थी ये तो करना ही था ना, तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन था मेरे पास करने के लिए, तो मैंने वो संस्कार पर वर्क नहीं किया। अब हम कहेंगे कि नहीं, मुझे आया, लेकिन स्टिल दिस आई कुड हैव डन विदाउट दिस, इनफैक्ट आई वॉन्ट टू डू इट विदाउट दिस. तो धीरे धीरे मेरा अटेंशन होगा उस पर, धीरे धीरे मेरा थॉट चेंज होगा और फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे बिहेवियर में आएगा. लेकिन गुस्सा जायज़ है, गुस्से से ही काम होगा, गुस्सा तो नेचुरल है, तो देन माई थॉट प्रोसेस विल वर्क ओनली.
0: इनफैक्ट अगर हम देखें, बिलीव जो है वो एक थॉट ही तो है.
1: इट इज, बट अ वेरी,
0: इतना रीस्टेटेड,
1: इट इज अ डीप रूटेड फाउंडेशन थॉट जिसके ऊपर से बेसिस पर
0: छोटे छोटे और थॉट निकलते हैं. ओके,
1: इसीलिए वो फंडामेंटल की क्वालिटी और भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती कि उसके आधार पर ही ये क्रिएट होंगे. अब जो इस थॉट को लेकर या इस बिलीफ को लेकर चलेंगे, एंगर इज नॉट हेल्दी या एंगर के बिना काम हो सकता है, तो उनको जब भी गुस्सा आएगा वो तुरंत किसको देखेंगे, अपने को देखेंगे, अपने पर काम करेंगे और धीरे धीरे वो बिलीफ फिर उनकी डेस्टिनी बन जाएगा कि एंगर के बिना प्यार से काम करेंगे. हो सकता है, लेकिन जब तक उधर ही चेंज नहीं किया, इट विल नॉट वर्क.
0: अगेन आई थिंक इट शुड बी बिलीफ. My belief leads me to destiny.
1: Yes,
0: basically.
1: It is. Belief creates thoughts, and then thoughts leads to destiny. Absolutely.
0: तो somewhere ये जो belief system की बात करते हैं, कई सारे हमने beliefs लेकर देखे थे, उन्हें explore किया था. आगे आने वाली कड़ियों में भी हम करेंगे कि क्योंकि हम happiness index को देख रहे हैं कि दिन भर में मेरा index जो है वो stable है या कहाँ कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है. जो हमने कई चीजें देखी थी, जो belief system ही थे वो actually कि मेरी happiness किस किस पर depend कर रही थी. जब मैंने ये कहा कि बाहर से आनी है, तो मैंने देखा कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ मुझे हैप्पीनेस मेरे डिपेंड करती थी. मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया. आई डोंट नो डीप रूटेड गया कि नहीं, लेकिन ये एक थॉट, एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया एक्चुअली कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है.
1: अभी तक था साधनों से खुशी मिलेगी, अब हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है. दो बिलीफ सिस्टम,
0: साधन है या नहीं है,
1: डिपेंडेंसी नहीं है उस पे. मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी अगर मेरे पास मोबाइल आज नहीं है. मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी मेरा मोबाइल अगर बाकियों के हिसाब से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है. साधन यूज करने के लिए है, लेकिन अगर वो साधन ही मुझे डिस्टर्बेंस का कारण बने, तो वो बने तो लाए, तो हमने सोचा था कि ये खुशी देंगे, लेकिन ये ही और ही. तो जैसे ही हम अपने बिलीफ्स को चेक करेंगे, अब नए बिलीफ के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें कि साधन है यूज़ करने के लिए, साधन कंफर्ट देते हैं, खुशी नहीं क्रिएट करते. नाउ एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस, एंड फिर अगर कंफर्टेबल लगे तो फिर उसको हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रुथ
0: एंड दिस इज माय न्यू बिलीफ सिस्टम.
1: दिस इज द ट्रुथ. देन एक है बिलीफ, एक है ट्रुथ
0: जो शाश्वत है, जो सच है.
1: जो हम कहते हैं ना, हमने कई बार कहा कि राइट और रॉन्ग एक्चुअली क्या है. तो राइट और रॉन्ग, यस वी से इट्स रिलेटिव, बट एक्चुअली इट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक मी कंफर्टेबल, दैट इज ट्रुथ फॉर मी. तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड इफ इट मेक्स मी कंफर्टेबल, देन इट्स नो लॉन्गर अ बिलीफ, दिस इज द ट्रुथ फॉर मी. Yes, this is what is natural. फिर हमारे जीवन के वो जो foundation layer है, वो थोड़ी सी set होती जाए.
0: I think yes, somewhere we're really reaching out to the crux. कि क्या है वो चीज जो अभी भी हम कहते थे ना कि वो feeling या वो thought इतना strong होता है कि वो नहीं change हो पा रहा, क्योंकि deep rooted, मतलब जीवन भर हम उस पर चले होते हैं. एक और अब बिलीफ सिस्टम है या एक ट्रुथ है, क्या है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर रही होती है. या हम कहते हैं कि वी गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हेन वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी गो ऑन हॉलीडेज, या हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से होता है, चाहे वो फिल्म्स के माध्यम से है, या किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं. यू नो दिस एक्चुअली गिव्स मी, व्हाई वी गो फॉर मूवीज, you know, why we watch television also?
1: Why do we watch?
0: Because it gives us somewhere, you know, we feel good.
1: See, why do we watch television? Yeah, why do we watch a movie? Yeah, why do we want to go for a holiday? कि कहीं ना कहीं जो मेरे thoughts चल रहे हैं, उनकी quality बहुत pleasant नहीं है मुझे. Then I say,
0: take a break. You know, every time you're stressed out, go and take a break.
1: Absolutely. तो take a break क्या करना है actually मुझे? मैं चाहती हूँ कि मेरे वो वाले जो thoughts हैं, वो चले जाएं, एंड आई कैन यू नो बी मेंटली वेरी रिलैक्स्ड. लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब करने से, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गो फॉर अ हॉलीडे, टू वॉच अ मूवी, टू गो वॉच टेलीविजन, व्हाटएवर, लेकिन विद फुल अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या क्या फ़ायदा है. हम सोच रहे हैं ये करने से खुशी मिलेगी, वो हमें अपने आप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये करने से खुशी मिलती है आपको, खुशी आप क्रिएट कर पाते हैं. एक्चुअली अगर आप थोड़े दिन ध्यान से अपने आप को देखेंगे, तो जितनी देर हम कुछ और करते हैं, हमारा मन वो हमारी थॉट, सपोज आज मेरा ऑफिस में किसी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन माई माइंड, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैं कल, अब मैं घर आई मैं टीवी ऑन कर दिया, राइट, टीवी में कुछ और टोटली डिफरेंट आई एम वॉचिंग, तो उतनी देर के लिए वो थॉट्स जो मेरे वो चली गई, तो क्योंकि वो थॉट्स चली गई तो मुझे लगा वो टीवी का वो प्रोग्राम मुझे खुशी दे रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ने क्या कर दिया था, मेरी वो जो पेनफुल वाली थॉट्स थी सारी, वो पेनफुल वाली थॉट्स थोड़ी देर के लिए वो रुक गई, तो मुझे तो आई फील बेटर, क्योंकि वो पेनफुल वाली थॉट्स तो मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए आई फॉरगॉट अबाउट इट, तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम ने मुझे खुशी दी, आई हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रोग्राम ने मुझे खुशी नहीं दी, वो थॉट्स को थोड़ी देर के लिए आउट कर दिया, जैसे ही प्रोग्राम ऑफ होगा वही वाली थॉट्स
0: वापस आने वाले,
1: वापस आ जाएंगे, कितनी देर प्रोग्राम देखेंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी बार हॉलीडे पर जाएंगे, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ अवॉइडिंग द इनर वर्क, क्योंकि हमें लगता है बस ये थोड़ी देर देख लिया वो सारी बातें भूल गई, एंड हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, कोई लोग उसके लिए शॉपिंग जाते हैं, कोई लोग
0: अपना
1: उसके
0: हर्ट दूर करने के लिए
1: भूलने के लिए, भूलने, सी दैट इज द डिफरेंस, एक है भूलना एक है दूर करना, एक है उसको खत्म कर देना, तो कोई भी ऐसे माध्यम यूज करने से वो खत्म नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, क्योंकि एक और मीडियम आपके माइंड के ऊपर ओवर पावर करता है, तो एक यस द बेनिफिट इज देयर कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने वो थॉट्स को भूल जाती हूँ, लेकिन साथ साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम मेरे माइंड के ऊपर ओवर पावर कर देता है, एक तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ ये सीखने की कि कैसे मैं अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लूँ, ताकि मेरा मन के ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं हो, लेकिन जितनी देर हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी भी दिन अपने आप को वॉच करिएगा कि आपका माइंड टोटली उसके अंदर उसके साथ हो जाता है, अगर वहां कोई रो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे पर है, वहां कोई लड़ रहा है उसका इफेक्ट
0: कंप्लीटली हावी हो चुका होता है,
1: अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली कि मेरे मन की अपनी जो पावर है थॉट क्रिएट करने की वो फॉर द टाइम बीइंग पूरी बंद हो चुकी है, ये सिचुएशन जो इस टीवी स्क्रीन पर आ रही है ये सिचुएशन मेरे मन की थॉट्स को क्रिएट करती है, यहाँ मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है कि सिचुएशंस क्रिएट थॉट्स, दिस इज वेयर बिकॉज आई सी इट हैपनिंग प्रैक्टिकली कि मैं अपने मन का कंट्रोल पूरी तरह से उस सिचुएशन को जो अभी तो अक्रॉस द स्क्रीन है लेकिन उस सिचुएशन को पूरी तरह से दे देता हूँ, वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ, तो इतना मेरा मन पूरी उसके अंदर इनग्रॉस्ड हो जाता है, तो उतनी देर क्या होता है मेरी माइंड की क्रिएटिविटी जो हम कह रहे हैं कि हमारे मन की इतनी पावर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन हमारे माइंड के अंदर पावर है अपने आप की थॉट क्रिएट करना, कि भले कोई सारे भी रो रहे हो मेरे आसपास मेरे मन के अंदर फिर भी ताकत है कि मैं उस समय स्टेबिलिटी की थॉट क्रिएट कर सकूं, लेकिन जितनी देर ये हम टेलीविजन या मूवी देख रहे हैं उतनी देर हमने क्या किया अपनी मन की पावर को दबाते गए, तो एक चीज है जिसको हमें धीरे धीरे से एक्चुअली एम्पावर करना है लेकिन हम उसको रोज और ही दबा देते हैं एंड रोज उसकी क्रिएटिविटी को फिनिश करते हैं,
0: क्रिएटिविटी टू क्रिएट माय ओन थॉट्स,
1: क्रिएटिविटी टू चूज माय ओन थॉट्स, क्रिएट तो हम कर ही रहे हैं, तो एक तरफ से हम वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर क्रिएटिविटी को अवेयरनेस के साथ हम अपनी थॉट्स क्रिएट करें और दूसरी तरफ से हम अपनी ही क्रिएटिविटी को ख़त्म करते जाते हैं, तो जहाँ तो हम एक तरफ से बात करते कि कोई भी सिनारियों में हमें डिटैच्ड होकर रहना है ताकि सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, पर अभी तो टीवी और मूवी का ही प्रभाव इतना पड़ रहा है,
0: पर उसमें मज़ा आ रहा होता है ना, उसमें वी गेट सो इन्वॉल्व्ड एक्चुअली, चाहे वो नॉवल की बात करते हैं, किताब की बात कर रहे हैं, या फिर हम मूवी की बात कर रहे हैं या सीरियल्स की बात कर रहे हैं,
1: यस,
0: तो एक स्टिमुलेंट है, एक कहीं ना कहीं व्हाई वी लाइक इट सो मच,
1: बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट जो मेरे अंदर एक तो मेरी सी वो मेरे इनर वर्क को बंद कर देता है, आई डोंट हैव टू डू एनी इनर वर्क, वो जैसे कि मेरे सोचने का काम
0: वो करने लगता
1: है, वो करने लगता है, मुझे नहीं करना,
0: वो बने बनाए थॉट्स मुझे दे रहा है पैक कर करके,
1: सी नाउ दिस इज अ गुड वन कि वो बने बनाए मुझे दे रहा है, अब यही थॉट प्रोसेस
0: के साथ बना रहा है मुझे, मुझे पैक कर करके खाना मिल रहा है, वाह, यस,
1: तो मुझे मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, समवन एल्स इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि वो समवन एल्स हैज टेकन ओवर माय होल माइंड पावर, तब हम कहते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए,
0: हमने सारे इमोशंस को जी लिया। yes. एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैं इस फिल्म में इतना खुश हुआ क्योंकि मैंने सारे इमोशन को जिया है।
1: सरसी अब क्या, लेकिन विच इज ओके, आप देखें वो सारा, बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ही इफेक्ट फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है। अभी तो थोड़ी देर टीवी के एक्टर्स थे, लेकिन फिर जब रियल लाइफ एक्टर्स के साथ होंगे हम सारा दिन, तब भी अगर मेरे माइंड ने वो पावर गिव अप कर दी है कि आई गो इनटू माय लाइफ देन विद दिस बिलीफ सिस्टम कि सिचुएशंस मेरी थॉट्स को क्रिएट करती हैं, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर वो पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। व्हाई डू वी से इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, हम कहते हैं ना इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कितना है आज के बच्चों पर, सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया?
0: ओह, इट मींस यू नो लाइक वो इतना स्ट्रॉन्ग आपका हैबिट बन जाती है,
1: क्योंकि you know, आपके माइंड की थॉट को क्रिएट कर रही है ना। आप एक पर्टिकुलर सीरियल,
0: कार्टून देख रहे हैं बच्चे कंटिन्यूअसली। yes.
1: अब कार्टून में भी आज अगर वायलेंस है, यू नो कार्टून में भी वायलेंस हो गया है, तो मैं वायलेंस देखता जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग थॉट्स, अब वो वायलेंस की इन्फॉर्मेशन लेते गए उसी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट होती गई, और हर रोज देखते देखते देखते हर रोज देख रहे हैं, तो वो मेरा क्या बनता जा रहा है? तो वही मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है, वही मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आता जा रहा है, तब कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया।
0: ओह, वी रियली नीड टू सी एक्चुअली, इफ आई रिपीट इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर मी, कि मैं आज कोशिश ये कर रही थी कि अपने थॉट्स खुद क्रिएट करो, राइट? देखिए मेरे बिलीफ सिस्टम्स या वो बिलीफ जो मेरे साथ चल रहा था, वो एक थॉट इतना स्ट्रांग होता था कि उसको मैं ओवरपावर नहीं कर पा रही थी, नया थॉट नहीं क्रिएट कर रही थी। और आज मैंने अपने आप को ऐसी सिचुएशंस, ऐसे माध्यम दिए, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो सीरियल है, फिल्म है या नॉवल है, कि उस हर सिचुएशन ने मेरी क्रिएट करने की, थॉट क्रिएट करने की, सही थॉट चूज करने की जो पावर है, उसको कुंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया।
1: एब्सोल्युटली। एंड उसमें भी अब क्या हो रहा है,
0: क्वालिटी,
1: इट इज हार्मफुल, यस। एंड इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग व्हेन क्वालिटी क्या है जो आप रोज देख रहे हैं। जब हमें ये समझ में आता है कि ये मीडिया हमारे थॉट पावर को कितना डीप इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह का प्रोग्राम, किस क्वालिटी का प्रोग्राम अंदर फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी थॉट्स को क्रिएट करना है। अब मेजोरिटी जो हमारे सीरियल्स हैं या सोप ऑपरा है, उसमें हर एक दूसरे को या तो चीट कर रहा है, कोई किसी का विश्वास तोड़ रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि दे विल से दिस इज व्हाट सेल्स। अगर सब कुछ हम उसमें अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो हु इज गोइंग टू वॉच?
0: और ऊपर से कई बार तो ये भी कहा जाने लग गया कि जो हो रहा है समाज में उसी का आईना है।
1: या लेकिन अगर कहीं थोड़ा थोड़ा हो भी रहा सपोज, लेकिन इतने सब लोग अगर उसको रोज देखते जाएंगे एंड दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन माय थॉट्स, तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में धीरे धीरे
0: होना शुरू हो जाएगा,
1: क्योंकि वो मेरे मन में होना शुरू हो गया। टीवी का इम्पैक्ट घर पे नहीं है, टीवी का इम्पैक्ट हर एक के मन पर है, और फिर वो हर एक की सोच वैसी बन। अगर मैं रोज एक सीरियल देखूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज तो घर के अपने ही परिवार वाले घर वालों को धोखा दे रहे हैं, अगर मैं रोज रोज रोज ये देखूं, विल इट नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय थॉट?
0: डेफिनेटली। इवन न्यूज को भी अगर हम देखते हैं हर रोज, चाहे वो पात्र बदल जाए, चाहे वो लोग बदल जाए, लेकिन वो न्यूज इतनी यही वाली हिट कर रही है,
1: वायलेंस वाली, फियर वाली, तो वो मेरी थॉट्स पर क्रिएट होगा। अगेन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस प्रोग्राम, क्यों अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि यहाँ हम एक डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं। अब जो एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे कि एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नेचुरल, फिर सुन सुन के क्या हुआ, उनकी थॉट पर उसका इफेक्ट पड़ा। एंड मेनी पीपल सेड लेट अस एक्सप्लोर कि गुस्से के बिना भी काम हो सकता था, लेकिन रोज अगर सीरियल देखेंगे जिसमें गुस्से से काम हो रहा
0: है, गुस्से पिक्चरें अभी तक यू नो लाइक ये जो बात है कि अंडरडॉग का जो वो होता है कि उसका जो है उसका वायलेंस, उसका दुख, उसका सब कुछ,
1: इट इज अ डायरेक्ट
0: ग्लैमराइज किया जाता
1: है। एब्सोल्युटली। तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना डीप इन्फ्लुएंस करता है।
0: यू नो इनफैक्ट आई हैड दिस मेजर बिलीफ सिस्टम कि जो पैसा है वो आपको गलत रास्ते पर लेके जाता है, पैसा इज सिन। And this is what the belief system had because of the films.
1: true, but which is not true.
0: Of
1: but
0: course,
1: actually,
0: but I understood it now.
1: Yeah, so this is not true. तो कहीं ना कहीं वो हमारा belief system बहुत influence होता है. तो भले आज हम TV देख रहे हैं, movies देख रहे हैं, और फिर हम सिर्फ अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे, see जितने छोटे हैं उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी तो अभी पावर ऑफ द माइंड डेवलप हो रही है कि कैसे थॉट्स क्रिएट करें.
0: और बड़ी बात आज यहाँ क्लियर ये होती है शिवानी कि ये हम सब कहते आ रहे हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए इतनी, टीवी इतना मत देखो. क्यों कहते हैं हम माँ बाप अपने बच्चों को? क्या हमें रीजन पता था? लेकिन आज अपने लिए भी तो रीजन पता चला. हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो देखना ही पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, हमें न्यूज़ तो देखनी है ना, हमें ये तो करनी है. और हम सिर्फ कहने के लिए कहते आ रहे थे आज तक अपने बच्चों को. आज अगर हम समझ के अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करें, तो टीवी से हम निकल तो नहीं पाते कंप्लीट.
1: नहीं, हम बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो, क्योंकि हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम वो उसी के सामने स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए, या उनकी आईसाइट खराब होती है. वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर कितना पड़ता है.
0: हम कहते तो आते थे, लेकिन कैसे पड़ता है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता था अभी तक.
1: अब अगर मैं इतनी देर टीवी, एक घंटा भी देखा, सपोज दो घंटा देखा, एंड माई माइंड बिकम्स एकदम यू नो ओवर पावर्ड बाय दैट, अब पढ़ने के लिए बैठो उसके बाद वो माइंड तो नंब अवस्था में है अभी. फिर उसको एक्टिवेट करना और फिर उसको वो कंसंट्रेशन लेवल पर लेकर, उसने कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है. उसने वो एक घंटे के लिए कंसंट्रेट
0: करना, उसके बाद आप किताब खोल के बैठे हो, कंप्यूटर खोल के भी बैठे हो, कुछ
1: नहीं. इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स लाइक फिर उसको बहुत धीरे धीरे धीरे उसको वापस उस स्टेज पर लेकर आना पड़ता है. तो टीवी का इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे, क्रिएटिविटी इन द सेंस पावर टू चूज माई थॉट्स, उस पर इम्पैक्ट डालता है. एंड टुडे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत
0: तो
1: कुछ
0: हम सब इतने अच्छा. अनदर थिंग विच आई वॉन्टेड टू टॉक इज दैट ये तो एंटरटेनमेंट वो ही जो मुझे सचमुच में आई वॉज गेटिंग इन्वॉल्व, यू नो, मे बी सीरियल्स थे या फिल्म थी. लेकिन आज जो रियलिटी शोज के नाम पर हमें देख परोसा जा रहा है और हम उसे देखने पे मजबूर हैं, क्या हफ कर पाते उसको? सोचते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं ये क्या दिखाया जा रहा है, ये ऐसा, ये मतलब सच के नाम पे क्या दिखा रहे हैं, शादी के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी शोज में बच्चों के साथ किस तरह का उनका परफॉर्मेंसेस, मतलब कितना एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है जो हम सबको तकलीफ दे रहा है,
1: लेकिन फिर भी हम सब बैठ कर देख रहे हैं,
0: डिस्कस कर रहे हैं उसको.
1: वो तो फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यू नो, आज का रात का एपिसोड, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वॉक पर जब आप जाएंगे, जॉगिंग जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, वो आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. तो वो नेगेटिविटी सिर्फ सुनने तक और देखने तक नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में इतनी बार.
0: तो हमारा एडिक्शन ये हो गया है टीवी का कि हम ना चाहते हुए भी उसे देख रहे हैं.
1: समवेयर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं. आज बहुत सारी बातें जो हम समझते थे कि हमारे लिए गलत है या सोसाइटी की मर्यादाओं के हिसाब से हमने कहा कि दिस इज, आज उन्हीं बातों को बहुत ओपनली बात भी की जा रही है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको कहीं ना कहीं एक सोशल एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, यू नो, कि दिस इज ओके. एंड इनफैक्ट उसको इतना, जब दुनिया से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है, सारे उसको प्रेज कर रहे हैं, तो हर एक का माइंडसेट कैसा क्रिएट होता जाएगा कि दिस इज ओके, पीपल आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. एंड जितना हम उस तरह का इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, हमारी सोच की क्वालिटी क्या होती जाएगी, हमारा राइट्स और रॉन्ग, जो हम कभी कभी सोचते तो थे कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, अब तो शायद वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा.
0: और सबसे बड़ी बात, हम ना देखना भी जाएं तब भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें इम्पैक्ट का नहीं पता, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माई माइंड. हम कहते हैं एक बार देखने में क्या हर्ज है, पता तो चले चर्चा किस बात की हो रही है, क्या है ऐसा इसमें, देखें तो क्या बात हो रही है, एंड देन वी स्टार्ट यू नो अप्रूविंग.
1: Yes, we do. And then our mind starts taking that, na? वो हमारे अंदर फिर, आज आप बच्चों का प्रोग्राम देख लो, तो बच्चे उसमें किस तरह से ड्रेसअप कर रहे हैं, बच्चे उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने वो

0: गीत को कितनी बार देखा होगा कि वो लोग उसी तरह उसको इनैक्ट कर पा रहे हैं. एंड वी से इट्स ओके, ये बच्चों का प्रोग्राम है तो हमारे घर में बच्चे बैठकर उसको देख रहे हैं. कल अगर बच्चे वही कपड़े पहनना चाहते हैं फिर हम उसके लिए इतना बड़ा इशू बना दें घर पे. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो इन्फ्लुएंस तो हमने ही दिया था. और वो बच्चे ने देखा कि जब सामने उस आर्टिस्ट ने इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसको सबसे इतनी प्रेज मिली. एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस कि मुझे प्रेज चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए. और जब मैंने देखा इस चीज को एक्सेप्टेंस मिलती है, व्हाई विल आई नॉट ट्राई टू कॉपी इट इन माय लाइफ. तो फिर आई विल आल्सो वांट कि मुझे ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसे. बट समवेयर वी आर इंस्ट्रूमेंटल और ये सब कुछ खुशी के लिए हो रहा है.
1: Bottom line was khushi.
0: Khushi ke liye ho raha. So it's very, very important question mark.
1: Entertainment industry is giving me happiness. I have to really, really check this belief system.
0: And isko kahin na kahin ghar mein ek culture create karna hoga ki kya humne watch karna hai और कितना उसको वॉच करना है और कितना उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट.
1: इनफैक्ट अब हमें टीवी देखना ही है, हमें पिक्चर देखनी है. कम से कम हम ये तो तय कर सकते हैं कि हम क्या देखें. यू नो दिस इज समथिंग विच वी रियली हैव टू थिंक. एंड नाउ अगर आपको बच्चों को भी मना करना है कि कितना टीवी देखना है, क्या देखना है, खुद को भी कहना है, हस्बैंड को भी कहना है, यू हैव अ पॉइंट. यू नो देयर इज अ लॉजिक. टुडे यू गेट दैट लॉजिक अपने लिए भी. अब आप कन्विक्शन से कह पाएंगे, कन्विक्शन से तय कर पाएंगे कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है. कोई सवाल, कोई मन में बात उठती है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ चाहते हैं कि शेयर करें, कोई सजेशन भी उठ रहा है, स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कहीं ना कहीं एक बहुत परिवर्तन की बात है और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम कि अभी तक ये था कि टेलीविजन ठीक है, मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस हाँ नहीं देखना चाहिए. आपने कहा कि आंखें खराब हो जाती हैं शायद या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाउ मच इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग, हमें कितना हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल पूरी सिचुएशंस पर जा रहा है और हमारी हैबिट बनती जा रही है. आने वाले जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम अपना कंट्रोल देते जाते हैं फिर. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. और आपसे हम विदा लेते हैं लेकिन यही कहेंगे कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे हम और कई बिलीफ सिस्टम्स को देखेंगे, किस तरह से वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे मैं बदल सकता हूँ उन्हें. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: डाला। टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। ऐसा नहीं लगता कि ओम शांति अब एक मंत्र बन गया है, एक ऐसा मंत्र जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ ये एहसास हमें होता जा रहा है। आपका इतना सारा प्यार हमारे पास पहुँच रहा है, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके ईमेल्स पहुँचते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरे परिवार की तरह हम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, वो आत्मा होने का एहसास हमें जोड़ता है। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, आप सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज एक बार फिर इस सफ़र को शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सर शिवानी, आज की बातचीत शुरू करें और एक नए सफ़र पर चलें, उससे पहले थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि जो एक मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह से परिवार हमारा जुड़ता जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए।
1: मुझे लगता है सभी तरफ से, पूरे इंडिया से, इंडिया से भी बाहर से, सभी देशों से और सभी एज ग्रुप, सभी रिलीजन्स, सो इट्स लाइक अ बिग फैमिली, यू नो, एवरीवन हैज जस्ट जॉइंड इन एंड इट्स सो वंडरफुल टू हैव एवरीवन टुगेदर एंड एवरीवन जस्ट सेंड्स इन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स व्हिच वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि सभी बड़े इतनी दुआएं भेजते हैं, इतनी गुड विशेज भेजते हैं। और सबसे ब्यूटिफुल चीज़ जो लगती है कि मेजोरिटी आर फीलिंग कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। कई हमें ये भी लिखते हैं कि यू नो, कोई हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई या कुछ ऐसी बात थी या कुछ एक अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे थे, और रेगुलर प्रोग्राम देखने से और मेडिटेशन का अभ्यास करने से दे हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, यू नो, कि इट जस्ट गोज टू प्रूव कि जहाँ आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो तो परिवर्तन कितना सहज है। जो आज तक हम सोच रहे थे नहीं, अपनी आदतों से मुक्त होना कितना मुश्किल है, वो कितना सहज अब लगने लग गया है।
0: अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी मैं, हमारे साथ भी दर्शक भी बहुत बार ये सोचते हैं कि ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो एक कितना सहज रूप से, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लगती थी, इतनी आसानी से सॉल्व होती नजर आ रही हैं, तो आप इतनी छोटी सी हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे समझ पाई हैं और कैसे उनके इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर पा रही हैं, तो ये एक पहेली सा अभी भी बहुत से दर्शकों के मन में है।
1: हम शुरू से यही कहते आए हैं कि ये ज्ञान सारा जो हमें मिल रहा है, ये डायरेक्ट इस समय, इट्स नॉट जस्ट टू से इट बट इट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड, के ये डायरेक्ट निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर इस समय हमें ये ज्ञान देते हैं। आज दिन तक महान आत्माओं ने हमें ज्ञान दिया, संत आत्माओं ने ज्ञान दिया और जो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल लगता था। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनके लिए वो बहुत सहज था और वो अपने जीवन में धारण कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद समझने में मुश्किल था, शायद हमारी बुद्धि उतनी शार्प नहीं थी उसको समझने के लिए। लेकिन जब परमात्मा डायरेक्ट आकर हमें ज्ञान देते हैं तो वो सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम टीचर का अर्थ ही है जो मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत सिंपल कर देते हैं। तो जो आज दिन तक मुश्किल लगता था कि आत्मा का अनुभव कैसे करे, यू नो, बिकॉज I had also read so many books and listened to so many people, but वो सारा कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं पूरा एक और एक कंफ्यूजन हो जाता था और लगता था समझ में तो आ गया, अनुभव कैसे करते हैं। तो वो आत्म अनुभूति एक कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया कि ये पता नहीं कब होगा, और शिव बाबा ने आकर उसको इतना सिंपल कर दिया कि आप हो ही आत्मा, मतलब आप सारा दिन तो अपने आप को अनुभव कर रहे हो, अब सिर्फ जब आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को अनुभव करोगे, यू विल रियलाइज दैट इट्स सो सिंपल, इट्स सो ब्यूटीफुल। और फिर सबसे बड़ी बात तो परमात्मा की खोज, हम सब भगवान को ढूंढ रहे थे लेकिन हमारी कैपेसिटी में कहाँ था भगवान को ढूंढना, वो तो भगवान खुद ही आकर तो अपना परिचय दे सकता है, तो वो परिचय तो कोई भी और नहीं दे सकता।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से हम उन्हें परम पिता मानते हैं, तो पिता जब समझाता है तो अपने बच्चे को जब समझा रहे हैं तो उसी की भाषा में इतनी आसानी
1: और उस लेवल से, बिल्कुल उस लेवल से समझाते, और क्योंकि सत्य ज्ञान सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर आकर देते हैं और हमें वही बातें बताते हैं जो हम जीवन में धारण कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो हम जीवन में धारण नहीं कर सकते, और फिर बताते बताते चाहे वो बहुत हाई बात भी हो वो हमारे लिए इतना इजी कर देते हैं और बात को धारण करने का तरीका भी बता देते हैं. सो इट्स एवरीथिंग इज डन. तो परमात्मा कहते हैं अब सब कुछ आपको मिल गया, समझ भी मिल गई, अब एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ, एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद के मेरे साथ में. दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. आज दिन तक हम एफर्ट कर रहे थे, इट वॉज नॉट कि हम अपने आप को चेंज करने की एफर्ट नहीं कर रहे थे, बट हम एफर्ट कर रहे थे, जस्ट मी द इंडिविजुअल. तो आत्मा तो इतनी डिस्चार्ज्ड है, वो एफर्ट करती भी तो उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब परमात्म शक्ति साथ में जुड़ जाती है तो एफर्ट थोड़ा सा, मदद बहुत सारी साथ में, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता है.
0: सिस्टर शिवानी, एक और बात, अभी हमने क्योंकि राजयोग को भी हमारे बहुत से दर्शकों ने समझा, सब कुछ बाबा का परिचय मिला, संगम युग की बात आपने की कि ये वो युग है चाहे घनघोर अंधेरा है लेकिन फिर भी उसका साथ मिला है और ये सबसे सुंदर बात है. फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जिंदगी जीते हुए, सब कुछ समझते हुए भी, वो जो जब इमोशंस सामने आ जाती हैं, जब सिचुएशन सामने आ जाती हैं, उनकी हैंडलिंग में जो अंदर का जो टर्मोइल है, जो इमोशन है, वो अभी भी कहीं रुकावट करता है. तो उसको थोड़ा और गहराई में जाने की अभी भी ज़रूरत लगती है.
1: हम जो कर रहे हैं, जैसे सारे भाई बहने कहते हैं कि हम रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं और उससे उनको बहुत प्राप्ति हो रही है, क्योंकि रोज़ जब हम परमात्मा द्वारा दिया गया इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनेंगे और वो रोज़ पढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन है जो रोज़ डलती जाएगी और उसको तरीका भी मिलेगा इम्प्लीमेंट करने का, और फिर अगर हम हिम्मत करते हैं तो हम उस तरीके को अपनाना शुरू करते हैं तो परिवर्तन तो आएगा ही. एक है कि हम इस परिवर्तन की यात्रा पर चलें. अब दूसरा है अगर आप इस यात्रा को और तीव्र गति से लेकर जाना चाहते हैं, अभी भी चल रही है और बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन इसको अगर आप और फास्ट स्पीड से लेकर जाना चाहते हैं और इसको आप और इजी बनाना चाहते हैं, यू नो इट्स बोथ द थिंग्स, इट विल बी फास्ट एंड इजी, तो मेडिटेशन

0: कर सकती हैं। हर सेंटर पे एक मेडिटेशन का रूम अलग से बना होता है, तो पूरे सेंटर का तो वायुमंडल होता ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो मेडिटेशन रूम होता है उसमें भाई बहने रेगुलर बहुत वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दैट रूम इज लाइक अ चार्जर। आप जैसे ही उस रूम में बैठेंगे आपको एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा मिलेगी। अब यही चीज को जब हम घर पे करते हैं तो घर का वायुमंडल थोड़ा सा इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट, तो उसमें हमें एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन घर पे नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हमें वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कनेक्ट करना, तो जब हम उस चार्जर में जाकर बैठ जाएंगे, हमें बहने भी वहाँ हेल्प करने के लिए होंगी, इट जस्ट बिकम सो ईजी। तो अगर आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर भी जाते हैं, अगर रोज जा पाए तो यू विल बी फ्लाइंग आफ्टर सम टाइम, आपको लगेगा कि एफर्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर रोज नहीं भी जा पाते, संडे सैटरडे जो भी डे सूट करता, आप देखेंगे दैट विल ब्रिंग अ चेंज।
1: इनफैक्ट वही बात है कि हर बात हमारे इस पूरे सफर में ये रही है कि अनुभव, तो और उसके लिए एक ट्रायल, एक कोशिश जरूर करनी, वो हमें ही पहला कदम उठाना है, तो वो सेंटर तक जाने का पहला कदम भी जो है वो हमें ही उठाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद देखेंगे कि हमारा अनुभव हम कहाँ खुद खड़े।
0: 2 महीने के बाद आपके वो सिस्टम के अंदर फिट हो जाएगा, यू नो इट विल बी कि आपको सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठकर वहाँ पहुँच जाएंगे। यू नो इनिशियली हमें कुछ भी करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, यू नो एक्सरसाइज भी जब हम सोचते हैं करने का तो टालते रहते हैं पहले, तो यू नो कल कर लेंगे कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उसका मुझे प्राप्ति नहीं मिली है, तो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है। 10 दिन कर लें वो एफर्ट और वो एक्सरसाइज से बेनिफिट दिखे कि अरे बॉडी फील्स वेरी गुड, फिर सोचना थोड़ी पड़ता है करें या नहीं करें, नेचुरल हो जाता है, वी फील लाइक डूइंग इट। फिर हम ऐसी स्टेज पर पहुँचते हैं कि जिस दिन नहीं करते हैं तो उस दिन लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, तो सेम थिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा सेंटर जाएं नहीं जाएं, टाइम निकालें, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा, क्योंकि आप सारा दिन इतने हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली एंड इट विल बी वन ऑफ द थिंग्स इन योर डेली रूटीन। जैसे कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो सारा दिन में, जो टाइम ना होते हुए भी हम उनको मिस नहीं करते, भोजन करना हम मिस नहीं करेंगे, एक या दो बार मिस कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा, तो वो काम जो हम करना चाहते हैं वो भी कैसे करेंगे। इसी तरह आत्मा के लिए भोजन है, हम सेंटर पे जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आत्मा को चार्ज करता है, तो वो मेरे को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। तो अगर मेरी एफिशिएंसी को कोई चीज बढ़ा रही है, why will I not take out time for that? I will definitely go for that.
1: Okay, so it's a promise to ourselves actually. एक अपने आप से वादा करेंगे कि ये एफर्ट एक आखिरी कदम शायद।
0: It's only for those who want to do it. See again, it's not that you have to do because there's no such thing as have to go to anywhere. लेकिन अगर क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, अब इस यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाएं, then that is the step.
1: वही जो जिज्ञासु है उसी के लिए वो आगे का सफर होता है, और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो उस आगे के सफर पे भी जाना चाहते हैं। What exactly is emotion? मतलब क्या है वो बेसिकली?
0: आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हम देखें या एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है विच इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। लगभग लेट्स से 10 ईयर्स बैक से ये कॉन्सेप्ट निकला है, उसके पहले ऐसा कोई वर्ड नहीं था इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ जिसके लिए हम कहते हैं। IQ वेरी कॉमन, पहले से हम सुनते आए कि इंटेलिजेंस, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वी डिडंट नो। तो एक है रैशनल इंटेलिजेंस जो IQ हम कहते हैं कि हमारी लॉजिक कितनी अच्छी है, यू नो एनालाइजिंग पावर कितनी अच्छी है, हम रैशनलाइज कितना अच्छा कर पाते हैं। तो रैशनल इंटेलिजेंस पर हम बहुत समय से चलते आए और आज इतना कुछ जो हमने क्रिएट किया है दैट इज़ ऑल अ रिजल्ट ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस, जो कि इट्स वेरी गुड। लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा बाहर बाहर बाहर की तरफ जहाँ जाते गए, तो कहीं हम इन द प्रोसेस अंदर से जो कनेक्शन था वो टूटता गया। वी वेंट लाइक दिस, आज हम कनेक्टेड बहुत अच्छा हैं सब एक दूसरे से, पहले हमें 15 दिन लगते शायद एक चिट्ठी भेजने कहीं पर, यू नो, लेकिन वो याद कितनी अच्छी थी, वो चिट्ठी फिर भी जो जाती थी वो कितनी फीलिंग्स और भावनाओं से भरी हुई थी।

0: आज हम एक सेकंड में ईमेल भेज सकते हैं, एक सेकंड में सेल उठाकर उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से शायद बात ही नहीं करना चाहते. तो वो जो रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि अंदर से हम जितने खाली होते गए या अपने आप से डिस्कनेक्ट होते गए, तो हम औरों से भी डिस्कनेक्ट होते गए. तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम ब्रॉडली अगर सोचे तो उसको कहेंगे समवन हु इज अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, यू नो, अवेयरनेस, कि एक जागृता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है. अभी रैशनल इंटेलिजेंस है, जागृता है कि बाहर क्या चल रहा है. आई नो एवरीथिंग, कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, आई नो एवरीथिंग, दैट्स रैशनल इंटेलिजेंस. वो सब पता है, स्पेस में क्या चल रहा है, समुद्र के एकदम गहराई में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है,
1: मैं
0: सी. तब जाकर एक क्वेश्चन मार्क आने लगता है, मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, उसका पूरा सिस्टम क्या है, उसको कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ या बाहर वाले क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ आकर मोस्ट ऑफ अस आर लाइक पता नहीं. एंड फिर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं आंसर्स निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं हम उस पर सोचना ही बंद कर देते हैं. एंड देन अगेन वी गो बैक टू द आउटसाइड वर्ल्ड. सी, दैट इज हाउ इट हैपेंड. क्योंकि हमें अंदर नहीं आंसर मिल रहा था, हम और बाहर जाने लगे, और बाहर जाने लगे, और अंदर से और दूर होते चले गए.
1: क्योंकि हमें इतनी आदत हो चुकी थी आंसर्स पाने की. बाहर हर चीज का हमें एनालिटिकल पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर बात का आंसर मिल रहा था.
0: बाहर जो आंसर मिलता है वो इंस्टेंट मिलता है, यू नो, इंस्टेंट. बाहर जो आंसर मिलता है वो प्रूफ से मिलता है, और अंदर जो आंसर मिलता है वो अनुभव से मिलता है. तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. अब वो अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा. बट वी जस्ट थॉट दैट we're too fast, we're just moving too fast. And why were we moving too fast? Because hum bhool gaye ki main kaun hu. Maine socha main sharir hu. Main sharir hu, to sharir ko khushi kahan se milegi? Physical cheezon se milegi. Sharir ki life kitni hai? Bas itni hai. To itne mein mujhe sab kuch batod lena hai. To I just went fast and fast and fast. And sab kuch mil gaya, लेकिन खुशी नहीं मिली, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट द बॉडी वांटेड. शरीर को जो चाहिए था वो सब मिल गया, कंफर्ट सारे मिल गए, लेकिन जिसको खुशी चाहिए थी उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया. तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा. तो इसीलिए नाउ वी हैव गॉन बैक टू आस्किंग आवरसेल्फ दैट क्वेश्चन, कि हु एम आई,
1: व्हाट एम आई,
0: व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, खुशी कहाँ से मिले, मेडिटेशन, यू नो, सी, ये सिर्फ अभी होने लगा, बिकॉज हमने वो पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी और जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला. सो नाउ वी रियलाइज्ड कि इट्स अ डिफरेंट जर्नी. एक्चुअली हम दोनों जर्नी साथ साथ कर सकते थे. इसलिए कई बार लोग कहते हैं अभी नहीं प्रोफेशनल लाइफ कर लो, फिर बाद में स्पिरिचुअल लाइफ करना. बट नहीं, आपको खुशी रिटायर होने के बाद थोड़ी चाहिए.
1: इनफैक्ट एक और अभी मुझे कुछ सुनने को मिला कि कीप योर प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ डिफरेंट.
0: या हाउ कैन यू से दैट? इट्स लाइक सेइंग, यू नो, फिजिकल, मेंटल, ये भी तो दो स्तर है. तीसरा स्तर है स्पिरिचुअल. क्या आप कोई जब ऑफिस में आएगा आप उसको कहेंगे कीप योर फिजिकल एंड मेंटल लाइफ सेपरेट? नो, बिकॉज दैट पर्सन इज अ पैकेज, पर्सनालिटी है वो. एंड वो पर्सनालिटी तभी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती है जब मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, एंड नाउ स्पिरिचुअली भी हेल्दी है. सो यू कांट रियली से कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अलग रखो. इनफैक्ट जितना उसको इंटीग्रेट करते जाओगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, वो और भी ज्यादा अच्छी होती चाहिए. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग वेरी बिग. अगेन इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया. आज इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, एंड वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कई बार उसका जो सार होता है कि एसेंस में वो क्या है, इट जस्ट गेट्स लॉस्ट समवेयर.
1: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, यू नो, बिकॉज अब हम उस दौर में हैं. सडनली आई सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो, कहीं कितने कर्ट्स और कितने, इतना सारा है, इतना कन्फ्यूजन अब स्पिरिचुअलिटी का भी आ गया है कि हम बोलने तो लग गए हैं वही भाषा, लेकिन अंदर वही इतनी कन्फ्यूजन है. हाउ टू एक्चुअली, यू नो, सी व्हाट इज द रियल थिंग, हाउ टू रियली अंडरस्टैंड,
0: क्योंकि उसको भी शायद हम सिर्फ बाहर कर रहे हैं.
1: हाँ, और बिल्कुल बोल रहे हैं, वही भाषा बोलने लग गए हैं,
0: क्योंकि पढ़ ली ना.
1: हाँ,
0: पढ़ ली,
1: सुन ली,
0: सुन ली. अभी तक भी सब कुछ रैशनल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था, और उसी को कर रहा था, अनुभव नहीं कर रहा था. अभी उसी की आदत पड़ी हुई है, तो अंदर जाने का समय नहीं निकाल रहे हैं. तो किसी भी किताब से कुछ पढ़ लिया किसी भी वर्कशॉप में कुछ सुन लिया, उसी को एक दूसरे के साथ चर्चा में ले आए और कहा वेरी गुड बुक, आपने ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड, एवरीवन इज रीडिंग, बट वेयर इज द प्रूफ दैट आई एम रीडिंग दैट बुक, दैट प्रूफ हैज टू कम इन टू मी, बट आई जस्ट रेड इट, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, सबको बताया आप भी पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, क्लोज द बुक एंड फिनिश्ड, एंड देन आई गो टू द मार्केट एंड आई बाय द नेक्स्ट बुक, बट आई एम नॉट यूजिंग इट. तो ज्ञान इज नॉट जस्ट रीडिंग, लिसनिंग एंड डिस्कसिंग, ज्ञान मतलब अवेयरनेस, कि आपको इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अवेयरनेस ऑफ मेरे अंदर क्या चल रहा है. अब जो मैंने पढ़ा या जो सुना उसको मैं इंटरनलाइज कैसे करूँ. एक सिर्फ एक सेंटेंस को ले लीजिए जो आपने पढ़ा, एंड यू विल नीड वन वीक टू वर्क ऑन इट, इट्स नॉट दैट सिंपल. लेकिन एक बार आपने उसके साथ वर्क कर लिया, इट्स देयर विद यू फॉर अ लाइफ टाइम. उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आपके अनुभव में आ गया, और एक बार अनुभव की हुई चीज अगली बार एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपके सिस्टम में नेचुरल आ जाती है. तो अवेयरनेस आ जाएगी अबाउट माय इमोशंस, माय फीलिंग्स, अवेयरनेस आते ही कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल ओवर माय इमोशंस, मास्टरी ओवर माय फीलिंग्स. अभी क्या है, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता. तो ये लो इमोशनल इंटेलिजेंस है. इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी लो ईक्यू. तो जितना अवेयरनेस आएगी कि ये मेरी इमोशन है, ये अभी क्रिएट हो रही है, क्रिएट होते कि अवेयरनेस आएगी, गुस्सा क्रिएट हो रहा है, मुझे आने लगा, आई एम फीलिंग दैट एंगर. जैसे आई एम अवेयर, इफ आई एम नॉट अवेयर वो आ जाएगा, आई शाउट एट एवरीबडी एंड फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट आई विल बी अवेयर कि ये सारा कुछ हो गया, दैट्स लो. लेकिन इफ आई एम अवेयर जब वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, आई कैन कंट्रोल इट राइट देयर. और ये एक जर्नी है जिसको हम करेंगे थोड़े दिन, कि ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आते जाएंगे, एंड दैट इज अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस.
1: If you talk about emotions, what exactly is meant by emotion? Because emotional strength, emotions को भी बहुत अभी भी हम बहुत positively लेते हैं कि मेरी emotions बहुत strong है, बहुत strongly feel करता हूँ मैं, या
0: feel करता हूँ. See, मैं strongly feel करता हूँ. That's okay. Emotions different, feeling different. अभी क्या हुआ है कि बिकॉज वी नॉट अवेयर कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो हम इमोशन वर्ड और फीलिंग वर्ड को एक ही भाषा में यूज कर लेते हैं, कि एज इफ दे बोथ द सेम थिंग, बट एक्चुअली दे आर टोटली.
1: अच्छा, इमोशन, बीइंग इमोशनल एंड हैविंग फीलिंग्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग.
0: टोटली डिफरेंट थिंग. अभी बीइंग इमोशनल इज इवन टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, लाइक वी सेड बीइंग सेंसिटिव, यू नो, बीइंग सेंसिटिव. हम इसे, आई एम वेरी इमोशनल, कि क्या मेरे पास मेरे इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई रो रहा है तो मैं भी रो देता हूँ, तो दैट्स नॉट अ स्ट्रेंथ एक्चुअली. इट जस्ट शोज कि आप कितनी जल्दी
1: डिप्लीट
0: हो जाते हैं, कि आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, परिस्थिति और सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है, और आप फील करते हैं कि वो इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं. तो एक्चुअली आई एम नॉट इन कंट्रोल ओवर माई सेल्फ. इमोशंस, वेरी सिंपली इफ वी टेक इट, इवन साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स वुड टेक इमोशन इन अ हेल्दी वे, दे थिंक इट्स हेल्दी क्रिएशन
1: एक्चुअली,
0: या बट अगर स्पिरिचुअल लेवल पर हम उसको समझते हैं एट अ डीपर लेवल, तो इमोशन इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस, अ डिस्टर्बेंस इन द एनर्जी ऑफ माई कॉन्शियसनेस, विच हैपन्स when something or someone to which I'm attached is threatened or moved. Sab kuch theek chal raha hai, everything is going fine, to meri consciousness ki jo energy hai wo bilkul stable hai, kuch problem nahi hai, sab theek chal raha hai. Aap aaye aur aapne aise haath mara aur ye cup toot gaya. If that cup is very precious to me, you know, जैसे कईयों का होता है घर में, that flower vase is very precious to me, या ये crockery is very precious, मतलब I am attached to that. तो टूटा तो ये, लेकिन disturbance यहाँ create होगी, क्योंकि object of my attachment ये cup था, और इस object को किसी ने आकर हिला दिया, और जैसे ही मेरे attachment के object को किसी ने हिला दिया, मेरी जो energy अंदर वो disturbed हो जाती है. And that could be an object, it could be a person, you know. माई रिलेशन, समबडी आई एम वेरी क्लोज टू, समबडी आई एम वेरी अटैच टू, उनको कुछ हो गया, अगर वो बिल्कुल ठीक है आई एम ओके, एनर्जी इज ओके, उनको कुछ हो गया एनर्जी यहाँ डिस्टर्ब, क्योंकि अटैच्ड गॉट डिस्टर्ब, आई गॉट डिस्टर्ब. इमोशन हमेशा एक डिस्टर्बेंस के रूप में क्रिएट होगा. एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, इवन डिक्शनरी में अगर आप देखो कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ इमोशन, इट सेज एजिटेटेड माइंड. एब्सोल्युटली, बिकॉज स्टेबल था लेकिन कहीं कुछ हुआ और यहाँ एक एजिटेशन शुरू हो जाती है. और सारा दिन में अगर हम देखें कि हम कितने प्रकार की इमोशंस क्रिएट करते हैं, सारा दिन में हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप जस्ट कीप वॉचिंग, इट्स हैपनिंग एवरी टाइम. सारा दिन में चेक करें कि ये डिस्टर्बेंस कितनी बार होती है, कितनी, और आप पाएंगे कि इट्स जस्ट टू ऑफन, इट्स हैपनिंग वेरी वेरी ऑफन, बिकॉज अटैचमेंट्स बहुत सारी हैं. अटैचमेंट्स ऑब्जेक्ट से हैं, अटैचमेंट्स लोगों से हैं, अटैचमेंट्स इस शरीर से हैं, अटैचमेंट्स अपने बारे में जो सोच के रखा है. आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अटैचमेंट है उस इमेज के साथ, किसी ने आकर कह दिया आपका तो काम सारा गलत है, डिस्टर्ब्ड. क्यों? क्योंकि मेरी वो जो इमेज थी, किसी ने आकर उस इमेज को हिला दिया, तो जैसे ही वो इमेज हिलेगी मैं हिल जाऊंगी. सो वन डे जस्ट स्पेंड इन दिस एंड यू विल रियलाइज कि हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग सो ऑफन. इसीलिए लोग कहते हैं थोड़ी सी शांति चाहिए. क्यों थोड़ी सी शांति चाहिए, जबकि आई एम अ पीसफुल बींग? क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाली जो स्थिति है ये सारा दिन में बहुत कम रह रही है, वो डिस्टर्बेंस बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिएट हो रही है. अब जब हम अवेयर होते जाएंगे कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, नाउ आई विल बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इट.
1: एंड बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट इमोशन, द अवेयरनेस विल स्टॉप मी.
0: अभी पिछले एक दो मास में हर रोज टेलीविजन पर शाम को जो मैच आता था, क्रिकेट मैच, विच इज ओके, आई मीन इट्स नॉट द क्रिकेट मैच इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन एक पूरा देश और मिलियंस ऑफ पीपल, वेरी मैच्योर पीपल, ग्लूड टू दैट टेलीविजन एंड उनके इमोशंस, यू सी. अब कोई कहेगा बट दिस इज गुड,
1: यूफोरिया,
0: इट्स हेल्दी, इट्स वेरी अनहेल्दी, इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को एक मिनट ऐसे, क्योंकि एक मिनट एक सिक्स हो जाएगा तो एक मिनट कोई आउट होगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा है. और अगर आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दे दिया है तो क्या होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो भी एक मिनट बहुत हाई और फिर एक मिनट एकदम लो, और वो रोज, क्योंकि आप उस यू नो वंस इन अ व्हाइल इज ओके, बट बिकॉज ये दिस वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड आप रोज देख रहे थे उसको दो घंटा उतनी देर, इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन.
1: क्योंकि वेरी टायरिंग
0: इट इज, क्योंकि आप इट इज टायरिंग यस, लेकिन वो रोज होने से क्या हुआ कि आपके मन को उस इमोशनल डिस्टर्बेंस की आदत पड़ जाती है.
1: देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर,
0: यस, एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ स्टिम्युलेंट व्हिच विल क्रिएट दैट डिस्टर्बेंस, एंड दैट इफेक्ट्स द बॉडी आल्सो, क्योंकि बॉडी में भी केमिकल्स हो जाते हैं, तो बॉडी को भी आदत पड़ गई है, तो नाउ यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर things outside to create that emotional disturbance.
1: Sister Shivani, I'm amazed, you know, every time we pick up a topic, there is something which, like, जिसे हम ये सोच रहे होते हैं कि वो normal है, वो सहज है, वो जिंदगी में होता ही है, ऐसा ही होता ही है, it comes out कि it can be different actually, you know, and वो जो कहीं ना कहीं अनजाने में ही हम पूरी energy को deplete कर रहे हैं, वो कैसे contain करके हम एक बेहतर जिंदगी जिसे हम तलाश रहे हैं उसे पा सकते हैं. इस पूरी बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे. आज की इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. इमोशंस और फीलिंग्स, अभी तक हम इसे एक ही मानते थे, हमें लगता था कि अगर हम इमोशनल हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी ताकत है, अगर हम खुश हो पाते हैं या दुखी हो जाते हैं किसी को देखकर, तो वो भी कोई अगर दुख में है तो वो, अगर हम उसके साथ रिलेट कर रहे हैं और हम खुद रोने लग जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो समवेयर वील हैव टू एक्चुअली चेक कि हो क्या रहा है. और जैसा कि सिस्टर शिवानी ने आज कहा है कि एक दिन अपने आप को देते हैं और देखते हैं कि कितनी बार हम ये जो यो-यो होता है हमारे इमोशंस के साथ, हमारे पूरी जो स्टेबिलिटी है उसके साथ, उसे चेक करें और जानने की कोशिश करें कहाँ कहाँ हम ऊपर नीचे हुए हैं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें का ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा. अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण आपको देते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। संत कबीर दास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना गया है। कबीर निष्कपट, फक्कड़, आडंबरहीन और वीतरागी जीवन जीते थे। आपाद मस्तक प्रेम में डूबे हुए कबीर ने पंडित, शेख, अवधु और योगी सभी पर आक्रमण तो किया, मगर बिना किसी बदनीयत के। पूजा, नमाज, हज और तीरथ से उनका कोई सरोकार नहीं था। बड़े ही सहज रूप से कबीर ने कहा था कि हम वासी उस देश के, जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे विकसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। उनके लिए प्रेम परम पुरुषार्थ है।

भाषा कबीर की चेरी थी, मगर उन्होंने कभी भी शब्दों का आडंबर नहीं रचा। आचार्य द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है कि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। कबीर न तो काव्यगत रूढ़ियों के कायल थे और न ही जानकार, फिर भी यूं लगता है जैसे उनके लिखे हुए सहज दोहों में सारे जग का दर्शन समाहित हो गया हो।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

कबीर ने विलक्षण अलख अगोचर अगम्य और प्रेम पारावर भगवान को राम कहकर संबोधित किया है। राम से उनका अद्भुत रिश्ता रहा। वे स्वयं को राम का कुत्ता मानते थे। वे कहते थे, गले राम की जेवड़ी, जित खेचें तित जाऊं। पर राम है कहाँ, जरा कबीर से पूछिए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम

0: वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
1: थैंक यू सो मच
0: सिस्टर। मैं वो ही लाइंस दोबारा पढ़ना चाहूंगा जो पिछले एपिसोड में पढ़ी थी। वी ईच डिसाइड वेदर टू मेक आर सेल्व्स लर्न इट और इग्नोर इट। नो वन फोर्सेस अस, नो वन डिसाइड्स फॉर अस, नो वन ड्रैग्स अस अलोंग वन पाथ और द अदर।
1: ब्यूटिफुल।
0: वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर।
1: परफेक्ट। इसको जितनी बार बार बार पे हम सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इस पे मंथन करेंगे, तो हमें एक क्लैरिटी आती है हमारी कितनी पावर है, औरों की कितनी पावर है। वन, जब हम कहते हैं कि यू नो ब्लेम मोड में जब हम जाते हैं, विक्टिम मोड में जाते हैं, सेइंग आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ, यू नो मैं ऐसा हूं बिकॉज ऑफ, एंड देन हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सिचुएशंस है या एक लिस्ट ऑफ लोग है।
0: बहाना,
1: बहाने ना, ब्लेम गेम में गए ना, विक्टिम, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग, दूसरी वो अंडरस्टैंडिंग जब हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। ये लाइन हमें दोनों चीजें समझा रही है। वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन कैन टेक मी ऑन दिस साइड और दैट साइड।
0: ये वाला तो मैं एंगल सोचा ही नहीं था।
1: ये भी तो समझ में आ गया ना।
0: हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो अब नया एंगल आ गया।
1: बिकॉज वी ईच डिसाइड हु वी आर,
0: वो तो मैं अपने लिए सोच रहा था।
1: दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा ना।
0: अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा,
1: दोनों तरफ से समझ में आ जाती है अब ये बात।
0: हम जो लोगों को बदलना चाहते हैं, व्हाट अबाउट दैट,
1: दैट विच मीन्स इस लाइन से हमें ये क्लैरिटी से समझ में आता है कि हमारे ऊपर लोगों का कितना असर पड़ सकता है और हमारा लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, उसकी कितनी लिमिट है। हम ये समझते हैं, सी हाउ पावरलेस वी हैव बिकम एक्चुअली, जस्ट एक्सट्रीमली पावरलेस। हम जो हैं उसका ब्लेम हम लोगों पे डाल देते हैं, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि लोग हमें बना नहीं सकते वैसा। हम अपनी विक्टिम फीलिंग में रह के लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं। एंड दूसरा, जहां तक लोगों को बदलने की बात आती है, तो हम पूरी तरह से उनको बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे पेरेंट बच्चे को, हम जैसा चाहे हम उसको बनाएं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हमने उनको नहीं बदला, हम नहीं किसी को बदल सकते। ये कोटेशन ये भी तो बात अंडरलाइन कर रही है, वी ईच डिसाइड हु वी आर, वी ईच डिसाइड हु वी आर, नोबडी कैन टेक मी ऑन ईदर पाथ दिस वे और दैट वे।
0: यू मीन टू से, अगर मैं, जैसा मैंने बोला था कि मेरी वाइफ को आई लाइक दिस, डोंट वेयर दिस, वेयर दिस, तो अब मैंने बदला उसको या शी डिसाइडेड?
1: शी चोज, आपने तो राय दी, शी चोज,
0: तो मैंने बदला नहीं
1: ना। वी कैन नॉट चेंज एनी वन। चॉइस उनकी किस बेसिस पे थी, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। सपोज एक पेरेंट बच्चे को, एक हस्बैंड वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को, या फ्रेंड फ्रेंड्स को, कोई भी किसी को एक बात कहते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड बी लाइक दिस, सामने वाली आत्मा चूज करती है कि उसको वो करना है या नहीं करना है। चूज करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सपोज राइट नाउ आप मुझे कुछ कहते हैं, आप ऐसे नहीं करो या आप ऐसे करो, ठीक है। तो आपने अपनी बात कह दी, राय दी, सपोज आपने डांट के भी राय दी या गुस्सा करके भी दी। सपोज कई बार हम बहुत इजीली कहते हैं, उन्होंने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने कर लिया ना, उन्होंने तो सिर्फ गुस्सा किया, ठीक है, करना या नहीं करना फिर भी मेरी चॉइस है।
0: ये बात सही है।
1: अब मैंने जब चूज करना है कि मुझे आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है, उसके कितने सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। एक, आपने जो बात मुझे कही वो मुझे सही लगी अपने लिए, आई लाइक्ड इट, कि दिस इज राइट, ये बात मेरे लिए सही है, तो वो तो मैंने फिर उस बात को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके उस बात को अपना बना लिया कि ये बात मेरे लिए अच्छी है, तो मैंने करना शुरू कर दिया। वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आई फियर यू, मुझे डर लगता है।
0: थर्ड ऑप्शन, आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी।
1: थर्ड ऑप्शन इज आई वॉन्ट टू प्लीज यू, मुझे सिर्फ आपको खुश करने के लिए या आपका अप्रूवल लेने के लिए, कि आप खुश रहे मेरे से, आप नाराज ना हो. विच कुड हैपन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, विच कुड हैपन बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर एट वर्क, इट कैन हैपन बिटवीन एनी टू सोल्स. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोल. मैं आत्मा, अगेन उस मुझ आत्मा की पावर पर डिपेंड करता है. अगर मुझ आत्मा को वो बात सही लगी अपने लिए और मैंने चूज की करनी, वो मेरी शक्ति है. अगर मुझ आत्मा ने इसलिए चूज किया करना क्योंकि मैं डरती हूं, या मुझे आपको खुश करने के लिए करना है इवन दो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली टू प्लीज पीपल, ओनली सो दैट आई डू नॉट लूज पीपल्स एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, सिर्फ ताकि लोग कहें कि आई एम गुड, मैं अच्छी हूं क्योंकि मैंने उनका कहना माना. उस रीजन से करना, और अगर वो चीज मैं कंफर्टेबल नहीं हूं या मेरे लिए सही नहीं है, तो वो मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है. चौथा जो आपने कहा कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी फॉर एनी रिलेशनशिप, लेकिन मैं मजबूरी से नहीं कर रही, ये करके ये खुश होते हैं. अगर मैं ये करती हूं तो ये खुश होते हैं, तो करने में क्या जाता है? नथिंग. बट प्रोवाइडेड जो डिसीजन मैंने लिया वो करने का, इट्स राइट फॉर मी. दूसरे को खुश करना, इफ इट्स नॉट राइट फॉर मी, तो वो भी मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है. तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, तो कौन किसको चेंज कर सकता है?
0: सही बात है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी नई नई शादी हुई थी, सिंस बिलोंग टू हैदराबाद, तो मैंने बोला हमारे घर में हाफ स्लीव जरा अच्छे नहीं. किसी ने फ्रेंड ने पूछा व्हाई आरंट यू वेयरिंग, इतने पुराने हैं तुम, मॉडर्न पहनो. बोले माय हस्बैंड डज लाइक. लेकिन जब फोन किसी का आया तो मैंने बोला उसको, बोलो मैं घर पे नहीं हूँ. तो उससे बोले ये वाला काम मेरे से मत कराइए आप. मैं झूठ वाला नहीं करूंगी.
1: सिंपल, ये ब्यूटीफुल है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी हर बात मान के, कहना मान के आपके अनुसार चलना है. जो बात सही लगेगी वो करेंगे, जो बात सही नहीं लगेगी वो नहीं करेंगे.
0: उन्होंने कहा मैं अनकंफर्टेबल हूँ इसमें, नहीं कर सकती.
1: आत्मा को ये चेक करना है, मैं किसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं किसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ. कोई और आत्मा डर के या खुश करने के लिए झूठ भी बोल देती फोन पे. ये भी तो करते ही हैं हम एक दूसरे के लिए. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल. दिस इससे हमें पता चल जाता है कि मुझ आत्मा की कितनी शक्ति है और कितनी मुझे अभी और बढ़ानी है, अपने ऊपर काम करना है. लेकिन कोई और आत्मा होती वो ये भी झूठ भी बोल देती आपके लिए, और फिर सारी जीवन ये कहती क्या करूँ, झूठ बोलना पड़ता है. मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इनकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है, विच इज अ विक्टिम फीलिंग विच मेनी ऑफ अस गिव टुडे.
0: 70s में सिस्टर हमारे पेरेंट्स फादर की जो प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, तो उसमें आसपास पे हम लोग जब शॉपिंग पे जाते थे तो पूरी रोड में कितने कपड़ों की दुकान, पता नहीं क्या क्या दुकानें थी. एक ही दुकान थी जहां उसने लिखा था फिक्स्ड प्राइस, एक सिंगल, और सबको मालूम था एंट्री पे इसका यहां बार्गेन नहीं कर सकते. और दूसरी दुकान वाले मेरे फ्रेंड्स कहते थे क्या करेंगे, धंधा है ना, बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता है ऊपर नीचे, ये तो युक्ति है, झूठ थोड़ा ही है. तो 99% के अगेंस्ट एक आदमी.
1: पावरफुल सोल, दिस इज द साइन कि चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, चाहे संघ का रंग कुछ भी है, चाहे परिस्थिति. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए उस आत्मा को थोड़ा सा नुकसान भी फेस करना पड़े, हो भी सकता है ना कुछ समय. इट टेक्स टाइम, यू नो, व्हेन वी स्टैंडिंग ऑन आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से, हो सकता है कि हमारा कभी नुकसान भी हो थोड़ा सा, ये पॉसिबल है. लेकिन उस फेज को भी क्रॉस करना है. उस हो सकता है दूसरे लोग कम प्राइस पे दे रहे हो, आसपास दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लाइंट किस तरफ जाएगा. लेकिन धीरे धीरे लोग किस तरफ जाएंगे जहां इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है.
0: फिक्स के साथ उसका प्रोडक्ट भी तो अच्छा होता था ना.
1: यही तो है ना,
0: डुप्लीकेट माल तो नहीं देता.
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंटेग्रिटी वाली आत्मा पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं. आसपास वाली दुकान कम में भी दे दे, लेकिन आपको बहुत जल्दी उनके वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दिखाई देने लग जाते हैं कि ये कम में भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ना कि अच्छी चीज दे भी रहे हैं कि नहीं, मुझे दिखने से तो पता नहीं चलती है, लेकिन आई सी द क्वालिटी ऑफ द सोल, कि इस आत्मा की इंटेग्रिटी कहाँ है। यही चीज इसने अभी एक्स प्राइस बोली, 5 मिनट के अंदर बार्गेन करते करते उसने 50% उसका कम कर दिया। ऐसी आत्मा क्वालिटी क्या दे रही होगी मुझे चीज की, ये हर एक को समझ में आता है धीरे धीरे। तो वो फेज थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे आप उसी के पास जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर हु वी आर, वी चूज, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये लाइन हमें कितना पावरफुल बनाएगी, और ये लाइन हमें दूसरों को वो जैसे हैं एक्सेप्ट करने में इजी करा देगी। हमारी जीवन की जो लंबी यात्रा चल रही है ना, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करने की, वी कैन नॉट चेंज पीपल। हमारा रोल कितना है दोनों डायरेक्शन में, दूसरे हम पर प्रभाव डाल सकते हैं,
0: ठीक है,
1: हम पर भी, संघ का जैसे आपने बोला, पेरेंट्स के वाइब्रेशन, ठीक है, सिचुएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में भी, ग्लोबल लेवल पे, देश के लेवल पे, समाज के लेवल पे सिचुएशंस आती हैं कुछ ऐसी, तो सिचुएशंस लोग हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा अपना होगा। सिमिलरली हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन
0: मेरा
1: उस आत्मा का होगा। ना कोई हमें चेंज कर सकता है, ना हम किसी को चेंज कर सकते हैं। लोग मुझ पर प्रभाव डाल सकते हैं, मैं लोगों पर प्रभाव डाल सकता हूँ, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, फाइनल डिसीजन उनका है। सो नीदर अ फीलिंग ऑफ विक्टिम, कि आई एम बिकॉज व्हाट पीपल डिड टू मी, नीदर अ फीलिंग ऑफ अ कंट्रोलर, कि आई कैन चेंज पीपल, सी आई चेंज सो मेनी पीपल, आई चेंज दिस वन, आई चेंज माई दिस वन, आई चेंज, नीदर वन इज पॉसिबल। ये आत्मा को बहुत पावरफुल और बहुत लाइट बना देगा। हम दोनों चीजों में आज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जहां अपनी बात आती है अपने संस्कारों की, तो हम बेचारा बन जाते हैं, हम कहते हैं क्या करें, इट्स बिकॉज ऑफ, तो वो पावर हम खो देते हैं। जहां दूसरों के संस्कारों की बात आती है, तो हम कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, इसको तो मुझे बदलना ही है।
0: मेरे पास एक गुस्से का संस्कार ज्यादा था, मैं कितना लोगों को गया, मैंने बोला गुरुजी मुझे शांति चाहिए, गुरुजी मुझे शांति, फाइनली किस एक गुरु ने बोला कि भाई तू शांति के कर्म तो कर,
1: सिंपल,
0: तो मांगते ही रहता है शांति, कर्म क्या करता है शांति के।
1: अब ये इसी लाइन को देखते हैं, उन्होंने आप पर प्रभाव डाला, मतलब एक राय दी, एक बात बोली, आप शांति मांग रहे हैं तो आप शांति के कर्म करें, सिंपल, राय दिया, अगर उस राय का आप पर प्रभाव पड़ा तो आपने उस राय को स्वीकार किया, फिर उसको अपने जीवन में यूज करना धीरे धीरे, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। सपोज आपकी स्थिति, आपका संस्कार चेंज हो जाता है, लेट से अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, कि आपके अंदर 6 महीने पहले बहुत गुस्सा था, आप उनसे मिले, उन्होंने कहा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, तुम आज से शांति के कर्म करो, आपने पुरुषार्थ करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर एक बहुत नोटिसेबल विजिबल चेंज आया, राइट, लेकिन ये जो चेंज आया, ये चेंज कौन लाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फील करते हैं कि ये मेरा संस्कार इस गुरु ने चेंज किया, तो भी आप अपने आप को कमजोर बना देते हैं, और अगर वो जो महात्मा है वो अगर फील करते हैं कि मैंने इसको चेंज कर दिया, तो वो भी एक इल्यूजन में रह रहे हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, मेरी कितनी पावर है और कितनी नहीं है, उस महात्मा की, संत आत्माओं की, पेरेंट की, फ्रेंड्स की कितनी पावर है, राय दे सकते हैं, फुल स्टॉप, फिनिश्ड, दैट्स वेयर इट एंड्स, वी बेटर नो दैट, दैट्स वेयर इट एंड्स।
0: ये संत आत्मा की आपने जो बात कही अभी, कि अगर वो समझे कि मैंने इसको ठीक किया, फिर वो सबको छुड़ा दे,
1: हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबको चेंज कर दे, एंड जिसको जो बोले वो इम्प्लीमेंट कर ले, तो कितनी पावर है। अब यही चीज हर पेरेंट को समझने की भी कोशिश है, कि पेरेंटल रोल और इन्फ्लुएंस कितना है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, वर्क प्लेस, हम सोचते हम जैसा चाहे, इवन इन एन ऑफिस एक सीनियर ये फील करेगा मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसे लोग हो जाने चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं जैसा चाहूं वैसे सब चलने चाहिए, नॉट गोइंग टू हैपन. हर आत्मा, वो कोटेशन, डिसाइड्स हु दे आर. हमारा रोल इन्फ्लुएंस ऑल्सो हाउ, राइट एडवाइस, सही राय, और उससे भी ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस, सही वाइब्रेशन. अगर जिन्होंने आपको कहा कि तुम शांति के कर्म तो करते हो, मतलब आज से शांति के कर्म करो,
0: राइट? क्या शांति के कर्म करते हो, जो शांति मांग रहे हो,
1: लेकिन वो बात का प्रभाव भी तब पड़ेगा अगर वो आत्मा खुद शांति के कर्म करती है तो. नहीं तो वो तो बात का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. चेंज तो कर ही नहीं सकते, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. अगर हम एक बात बोल रहे हैं लेकिन हम उसको लिव नहीं कर रहे, तो वो बात तो ऐसे ही उड़ जाएगी.
0: वही बात हो गई ना कि मैं सिगरेट पियो, बच्चे को बोलो नहीं पियो. मैं एक बच्चे को बोलूं कि बोल दो डैडी घर पे नहीं है फोन पे, और बोले तुम झूठ मत बोलो, वही बात हो गई.
1: कितनी पावर है. वन, वी डोंट हैव पावर टू चेंज पीपल. Definitely. We have power to influence people. But that power to influence people will also be there only if we are living what we are radiating and what we are saying to them. Nahi to power to influence bhi nahi hai.
0: This is a very, very, very important
1: point. Power to
0: point.
1: influence bhi nahi hai phir to.
0: Matlab, jo bhi agar supposing main bachchon ko kuch bol raha hun, to pehle mujhe wo karna chahiye. वो मैं करता हूँ तभी जाके उनको असर होगा.
1: पावर टू इन्फ्लुएंस होगा नहीं ना उस बात का, क्योंकि उस बात में पावर नहीं है. ठीक, किसी की बात को हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा एंड मुझे जैसे टच हो गई वो बात, मुझे मेरे दिल को छू गई. नहीं बोलते हम, दैट थिंग जस्ट हिट मी व्हेन दैट पर्सन सेड दैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उन्होंने बोला. अच्छा, कई बार हम क्या कहते हैं, ये बात मैंने इतनी बार सुनी है, मुझे तो पता है ये बात, कितने लोगों ने मुझे आज तक बोली थी, कितनी जगह मैंने पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कही ना तो मुझे जैसे कि जस्ट हिट कर गई. वो क्यों हिट, किसकी बात करेगी? हिट वो बात करेगी जो पावर के साथ आएगी. और पावर के साथ किसकी बात आएगी? जो इम्प्लीमेंट की हुई, जिसको आपने भी एक बार कहा था कि जो तपी हुई बात आएगी,
0: तपस्वी,
1: उसके अंदर पावर होनी चाहिए. तप मतलब क्या? तप मतलब उस बोल में शक्ति, उस बोल में कितनी पावर है. नहीं तो हम किसी को एक अच्छी बात कह भी रहे हैं, अच्छी राय दे भी रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन नेगेटिव है, हम कुछ और कर रहे हैं, हम ऑपोजिट कर रहे हैं. तो इन्फ्लुएंस तो वाइब्रेशन का ज्यादा होगा ना, बोल से ज्यादा.
0: जैसे किसी को मैं थर्ड पार्टी की कहानी या 100 साल पुरानी कोई कहानी सुनाऊं और आप बीती सुनाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ बोलूं, तो वो भी बंदे को मेरे इमोशन के साथ वो एक हो जाता है.
1: अगर मैं सैड है ना,
0: क्यों मैं सैडनेस में, तो उसका भी चेहरा ऐसे हो जाता है. और पिक्चर की सुनाओ तो ऐसे अच्छा अच्छा.
1: जब आप पिक्चर की सुना रहे, सपोज आप मुझे यहाँ बैठ के एक स्क्रिप्ट सुना रहे, एक मूवी सुना रहे, तो सिर्फ वर्ड्स है उसके बारे में, वाइब्रेशन नहीं है उसकी.
0: ये वाला तपा हुआ ज्ञान है, एक्सपीरियंस्ड है, मेरा स्वयं
1: तपा हुआ, मतलब वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस.
0: हाँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस,
1: वाइब्रेशन उसकी आनी चाहिए ना. वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव.
0: ज्ञान में मैं कई बार लेक्चर में जाता हूँ सिस्टर, जो हम कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, वही अगर आदमी खड़ा होकर रट्टू रट्टू मार के वो बोलते हैं तो मुझे नींद आ जाती है. ऑर्डिनरी आदमी भी जो बिना कागज के, बिना उसके, जब तपा हुआ अपना तपस्या वाला ज्ञान सुनाता है शक्ति से, ऐसे मेरा पूरा एक एक वर्ड सुनाई देता है.
1: एक छोटा बच्चा भी हमें सिखा के जा सकता है. सीख तो हम किसी से भी सकते हैं. सीखने के लिए हमें कहीं जरूरी नहीं है ऐसी जगह जाना है. सीखना मतलब दूसरों के गुण, दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होकर उस गुण और संस्कार को अपना बनाना, वो तो हमें किसी के अंदर भी दिखाई दे सकता है. इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीवन. अगर हम अपना एंटीना हमेशा रखे उस डायरेक्शन में कि मुझे कैच करना है, मुझे सीखना है, वील गेट टू लर्न फ्रॉम एवरीवन वी मीट.
0: मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट आई डोंट इवन रिमेम्बर, 30 मोर देन 30 ईयर्स. मैं कुछ ऐसी कर रहा था किसी प्रोड्यूसर से, यू नो, थोड़ा सा झुक के बात कर रहा था, कुछ काम चाहिए था, तो पीछे से कहता है, सुरेश भाई आपको शोभा नहीं दे रहा है. यू नो, आई वॉज मेकिंग अ ड्रिंक फॉर हिम, तो बोला ये आप मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। तो मैं ऐसा हिला, वो कौन था क्या था मुझे आज तक याद नहीं है सिस्टर। उसके बाद मैंने अपनी रेस्पेक्ट रखी, मैंने बोला इतना झुकना नहीं है। तो जैसे आपने कहा ना कि कोई कब आके सिखा जाता है, और सारी जिंदगी के लिए वो मुझे सिखा गया, फिर मैं कभी नहीं किया, फिर मैंने मांगा ही नहीं।
1: दिस इज इट, मतलब जिसने कहा वो बात उसकी वो अपने जीवन की धारणा थी।
0: लेकिन मैं दूसरों को देखता था ना कि इनसे वो लोग खुश रहते हैं ऐसा करने वाले, ये बिहेवियर, तो मुझे ना चाहते हुए वो बिहेवियर मैं ट्राई कर रहा था।
1: राइट,
0: तो ऐसा टच किया। आई स्टिल डोंट नो हु ही वाज, यहाँ हाथ लगाया था।
1: सी, अभी तुम जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन शब्द में कितनी पावर थी,
0: उसकी फीलिंग में और उसका मेरे बारे में
1: भावना, इंटेंशन। सो वाइब्रेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इससे अभी हमें क्लैरिटी से समझ में आ जाता है लोगों की हम पर कितनी पावर है और हमारी लोगों पर कितनी पावर है। इसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदल देती है। आज हम अपने लिए कह देते हैं मेरी गलती नहीं, और दूसरे के लिए कह देते हैं ये ठीक क्यों नहीं हो जाता। अपने को चेंज करने के लिए हमें दिखता है कि कितना मुश्किल है। आज अपना एक संस्कार उठा लीजिए, कोई भी एक, एनीथिंग, एनी वन संस्कार, एंड जस्ट सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कभी आज से मैं ये नहीं करूंगा, हो गया, ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता है। जब हमें अपना एक संस्कार चेंज करने में, अपना जिसमें कंप्लीट हमारी पावर है, जब अपना एक संस्कार चेंज करने में एफर्ट, अटेंशन, फिर उसमें भी कभी हम हारते हैं, फिर कभी ओवरकम करते हैं, कभी नहीं कर पाते, इट्स अ जर्नी ना। जब अपना एक संस्कार चेंज करने में इतनी जर्नी, अटेंशन, एफर्ट जाता है, तो हमारे बोलने से दूसरे का संस्कार चेंज हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसा ये कभी कैसे हो सकता है? हम इतना इजीली दूसरों को कह देते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे होने
0: चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम?
1: इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? क्यों हम बोलते हैं इतना भी नहीं कर सकते?
0: इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम में? इतना तो सोचो, उम्र देखो, क्या क्या बोल देते हैं हम?
1: बिकॉज कुछ संस्कार जो हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत कम्फर्टेबल है। राइट, सपोज आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए इतनी नेचुरल चीज है, तो मतलब वो कुछ एफर्ट नहीं है ना। सो जो चीज का हमें एफर्ट नहीं होता तो हम उसको जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो है ही, मतलब ये कैसे नहीं हो सकता किसी के पास, ये तो है ही। तो आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, पेड़ को भी हिला सकते हैं। सपोज मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तो मेरे लिए तो आधा किलोमीटर चलना भी एक एफर्ट है। लेकिन तब उस चीज को देखकर कि ये कैसे चल रहे हैं, इनको आधा किलोमीटर चलना मुश्किल है, और वो भी कितना धीरे धीरे, ऐसे कोई चलता है क्या? वो भी टेढ़ा होके ऐसे, ऐसे कोई चलता है? तो देन यू विल मेक फन ऑफ मी, यू विल रिडिक्यूल मी, यू विल क्रिटिसाइज मी ऑल्सो, कि इतना भी नहीं करना आता।
0: ये जो आपने बात की कि क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल वर्सेस जो हाथ मुझे आया जिस आत्मा का, ये आपको शोभा नहीं देता। तो सिस्टर मैं उसके बाद हर चीज वो मैंने बांध लिया, मतलब आ गया, कहीं भी कोई भी चीज जो शोभा नहीं देती उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, चाहे मंत्री होए, चाहे फिल्म होए, चाहे अच्छे से अच्छा रोल होए, या कोई मतलब दुनिया का कोई किंग बोले क्या चाहिए, जहां शोभा मतलब मुझे जो शोभा नहीं देती, अपने से झुक के अपने आप को गिरा के कभी। लोग भले मुझे बोले एरोगेंट, बड़ा अकड़ू है या बड़ा अहंकार है, नहीं, मैंने उसकी बात को पकड़ ही लिया था।
1: अब उस बात को भी हम और गहराई से देखेंगे, क्योंकि राय दूसरे ने दी, राय किस भाव से दी, किस भावना से दी, किस सिचुएशन में दी, और किस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए दी, और फिर क्या हमने उसको देखा कि उसने मेरे जीवन को कंफर्टेबल बनाया? मुझे कौन सी चीज शोभा नहीं देता?
0: जो भी रॉयल्टी नहीं है,
1: जो भी रॉयल्टी नहीं है,
0: नहीं करूंगा,
1: नहीं करूंगा। अब इस लाइन को और गहराई से लेना है, जो भी रॉयल्टी नहीं है वो नहीं करूंगा। बहुत सूक्ष्म, जैसे आपने अभी कहा ना कि जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए भी कि ये शोभा नहीं देता, लेकिन ये लाइन इम्प्लीमेंट करते करते मेरे जीवन में अहंकार बढ़ रहा था या नम्रता? ये मुझे चेक करना है, ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग
0: मेरे जीवन में। तो अहंकार ही बड़ा था,
1: आंतरिक शक्तियां बहुत सूक्ष्म होती है।
0: नहीं, उस टाइम पे तो अहंकार बड़ा।
1: ये हम और गहराई से देखेंगे फिर कि मेरे जीवन में क्या बढ़ा उस लाइन से
0: अहंकार,
1: और उस लाइन को आज भी लेना है फिर से, क्योंकि लाइन तो बहुत ब्यूटीफुल है कि ये आपको शोभा नहीं देता, मतलब ये रॉयल्टी नहीं है। लेकिन अब मैं उसके और डीपर मीनिंग में जाऊं और चेक करूं क्या क्या मुझे शोभा नहीं देता और क्या क्या चीज मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो दूसरे की दी हुई राय भी एज इट इज नहीं इम्प्लीमेंट करनी होती। दिस इज द पावर।
0: मैंने दूसरे की दी हुई राय इम्प्लीमेंट नहीं की, मेरे अंदर कुछ जाग गया,
1: दैट्स ओके, बट उसको
0: और मैं वैसा बन गया। लेकिन आई एक्सेप्ट कि मेरी, मैंने कभी भी उसको नम्रता से नहीं किया।
1: सो इसीलिए जब हमें कोई राय दे, एनीथिंग, नॉट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, जस्ट अदरवाइज, उस राय को लेना है, अपने लिए चेकिंग करनी है।
0: बढ़ता गया मेरा तो,
1: मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर उस राय को इम्प्लीमेंट करना है। सपोज हमने राय को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमें लगा कि नहीं इतना नहीं ऐसे, फिर हमें उसको चेंज करना है। तो यही जो आप कह रहे थे पहले कि हम बहुत इजीली लोगों को कह देते हैं कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सीइंग पीपल थ्रू आर संस्कार। आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर यू नो एडवाइस देंगे या कमेंट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर मी।
0: सही बात।
1: और आप इतना इजीली मुझे कह देंगे इतना भी नहीं कर सकते,
0: चार रोटी नहीं खा सकते यार, तुम दो ही खाते।
1: सी, सो वी आर सीइंग पीपल थ्रू आर संस्कार, वी हैव टू सी पीपल थ्रू देयर संस्कार।
0: सिस्टर, देयर संस्कार का मतलब ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं इस तरह बोल के वीक भी तो फील कराते हैं ना।
1: राइट,
0: ये मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अगले एपिसोड।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन ड्रैग्स अस अलोंग वन पाथ और द अदर, व्हिच मींस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर एंड cannot blame situations, past or people. It also means other people will choose their path. We cannot force them to change. We can give our opinion to people. To accept it or not is their choice. They can accept because they found it right, or they fear us, or they seek our approval and want to please us, or they will do it for our happiness. Whatever may be the reason, choice and decision is theirs. We have not changed them. People and situations can influence us, but the final decision will be ours. We can influence people, but the final decision will be theirs. No one can change us, and we cannot change anyone. Neither a victim feeling that we are who we are because of others, nor a feeling of being a controller. When we give advice to others, our vibrations and words both radiate to them. If we believe and live that advice, if it is a part of our energy field, then our vibrations and words will be in harmony and will create a powerful impact on them. Our vibrations influence others more than our words.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी।

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा नाद आपण ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशिया बाटो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति, शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति, किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है। और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति। और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है? टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है। और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हुनर में मेले में अकेले तेरी बाजार सर में

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए। बोली जनता बोली, ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा।

0: तेरे का इशारा समझू अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ोगी?
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

हंस तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।

बड़े बन